रखाओ। आज्ञा मान जान सुख पाय, तुन सुन नाम तुहारो जियो। ईगा ऊगा हर तुम ही यो गुरते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई ए बाता, ताब कुशल खेम सब तीयो। साध संग नानक परगासियो।

चघाऊ। संगत का गुण बहुत अधकाई, परसुआ गण उधारे। परस न परस भय कुबजा कहो, लय वैकुंठ सुधारे।

हम बारक किशु न जानहू, हर माध पिता प्रतपाला, कर माया अग्नित मेल ते गुरु राखे दीन दयाला, बहु मैले निर्मल होया, साब केल बिखार जस जाला, मन अंध पया गुर पाया, जन नानक शब्द निहाला, माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मान हर पाज साब केल बिख काट, हर घर उतारियो गुर पूरे, मेरा शीश कीजे गुरवाट रगाओ, मेरे हर प्रभु की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कट काट, हर साजन मिलियो गुर पूरे, गुर बचन बिकानो हाट हाट, मकर प्राग दान बो किया, शरीर दियो अद काट, बिन हर नाम को मुक्त न पावे, बो कंचन दीजे कट काट, हर कीर्त गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट, त्रिवटी फोर परम पौ पागा, लज पानी मटकी माट, काल युग गुरपूरा तिन पाया, जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया, सबला

रे मन टहल हर सुखसार, अवर टहलां झूठियां निर करे जम सिर मार रखाओ। जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार। नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर हो ना सो होया को ना मेटन हार। अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार, जास जबत होवत उधार। रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद, जाके सिमरन छूटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतर, जाके सिमरन कुले उधर, जाके सिमरन पौ दुख हरे, जाके सिमरन अबदा टरे, जाके सिमरन मुजद पाप, जाके सिमरन नहीं संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कवला दास, जाके सिमरन निध निधान, जाके सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, ओड भगत उधार करी, हर दास दासा दीन शरण, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत परिपूर्ण काम रखाओ। बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीवक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाव बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवलागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना तास तास धर्म राय जपत है

परम भुलाए ओ नामितिया पवर्तदा करना किसु न जाए जिस नाल जोर न चलई खले कीचे अरदास नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास मारू महला तीजा मारू ते सीतल करे मनूरहो कंचन होए सो सच्चा सालाइए तिस जीवड़ अवर न कोए मेरे मन अन दिन त्याए हर नाओ सतगुर के भजन आराध तू अन दिन गुण गाओ रखाओ गुरमुख एको जानिए जिन सतगुर दे बुझाए सो सतगुर सालाइए जिदू ए सोजी पाए सतगुर छोड़ दूजे लगे क्या करन अगे जाए जा पुर बदे मारिए बहुती मिले सजाए मेरा प्रभ वे प्रवाहो है ना तिस तिल ना तमाए नानक ते शरणाई पज पो आपे बख्श मिलाए मारू महला चौथा कार दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर घर शरण परे दालद पंच सुदा में मिलियो भगती पाए तरे भगत वचल हर नाम किरतार्थ गुरम कृपा करे मेरे मन नाम जब उधरे त्रू प्रहलाद बिदरदासी सुत

प्रसाद, हर हर भगत परे पंडारा, गुरमुख राम करे निस्तारा, जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी, सो हर के गुण गावे जियो, हर हर कृपा करे बनवाली, हर हृदय सदा सदा सुमाली, हर हर नाम जपो मेरे जीवड़े, जप हर हर नाम छिड़ावे जियो रखाओ, सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर देव पसाओ, हर सत सत सदा हर सत, हर सत मेरे मन पावे जियो, नवे शिदर सर्वे अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता, जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मल ले जावे जियो, माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरगे दुत्तर संसारी, सदगुर बोध दे प्रसाद।

पंजवा पांच बरख को अनाथ रू बारक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हित नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगन उधारे मोए दीन अल्पवद निर्गुण परे ओ शरण दुवारे रगाओ बाल्मीक सुबचार हो तरयो बदक तरे बिचारे एक निमख मन माए आराध्यो गजपद पार उतारे इन्नी रखिया भगत प्रहलाद हर नाग सुनखे बिदारे।

दान आए, त्याग्यो सगला मान महत्ता, दावरेन शरणाए, कहो नानक हर मिल पे एक महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस्त अंकारा, कवन चेन सुन ऊपर सोयो, मुक्ते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती मुदत, चलते खबर ना पायो। रघाओ सैन सीर पवन अर पानी, बजदा खिमाने प्राते, पंच तत मिल पयो संयोगा, इन मैं कवन दोराते। जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हो में पाई, जन्म मरण उसी कौ है रे, ओहा आवे जाई। वर्ण चेन नाई किश रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजार है, तब एक एक अंकारा। मारू महला पंजवा, मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना काले हो, नाम रतन गुण हर बनजे, लाद वखर ले चालियो। सेवक की ओढ़ किनभी प्रीत, जीवत साहेब सेवो अपना, चलते रखो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा की नहीं ठाकुर, तिस्ते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रे पीतर, उठ ओवाहू कौ दौरियो। आज्ञा मैं पूख, सोई कर सूखा, सो हर कहीं जाने हो, जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथे ले माने हो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक कहो, सबरे हलत पलाता, तन सेवक सबल ओ आया, जिन्ना न खसम पछाता। मारू महला पंजवा, खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई, समता का पाए बिश्रामा, मिट गई सगली ताई। आप मोहे जीवन पदवी पाई, ईत आओ मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई। रघाओ काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल बैराई, सद हजूर हाजर है नाजर, कथे न पयो दूराई। सुख शीतल श्रद्धा सा पूरी, होए संत सखाई, पावन पतत किए खिन पीतर, महिमा कथन ना जाई। निरपो पय सगल पय खोए, गोविंद चरण।

दीनानाथ जगत पित माया, प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण, जिस पावे तिस ही निस्तारण, अंध कूब ते काढ़न हारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन तारिया, महा अगन ते आप उबारिया, जब तब संजम इस ते किश नाही, आद अंत प्रभ अगम अगाही।

संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पास करो कृपा मुराद माधो सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवा कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संयोग वियोग तुरो हुई हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमाएड़े जी देही विच जीव आए पया जिथे अगन पगे पड़हारे ऊर्द मुख महा गोबारे सास सास समाले सोई उथे खसम छड़ाए लाया विचों गर्भे निकल आया खसम सार दुनी चित लाया आवे जाए पुआईए जूनी रहन न कित ही थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सत के थापे जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो प्रवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई भैणो ना भाई एको सहाई राम हे कीता जस होवे पापा मलो तोवे सो सिमरो प्रधान हे कड़ कटे वासी सर्ब निवासी अस्थिर जा का थान हे आवे ना जावे संगे समावे

ना बिना को कछ नहीं, गुरपूरे पूरी मत कीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्हीं नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो

गुरपूरे सा वास है, काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है, भाणे बक्से पूरा तनी, सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लए, गुर को बर जाइए।

लगाओ, गुण विसर गए अपराधी, मैं बौरा क्या करो हरे, तू दाता दयाल सबे सेर, आहे निस दात सुमार करे, चार पदार्थ लय जग जन्मया, सिव शक्ति कर वास तरे, लागी भूख माया मुगजोग, मुग्ध पदार्थ मोहे करे, कारण पलाव करे नहीं पावे, एत उद ढूंढत थाग परे, काम क्रोध अंकार वे आपे, कूड़ कुटां से प्रीत करे, खावे पूगे सुन सुन दिखे, पैर दिखावे काल करे, बिन गुरु शब्द न या पछाणे, बिन हर नाम ना काल टरे, जेता मोह में कर भूले, मेरी मेरी करते शीन करे, तान तन बिनस सहसे सहसा, फिर पछतावे मुख तूर परे, बिरध पया जो बन तन खिसिया, ताप कंठ बरुद्ध हो नयनो नीर टरे, चरण रहे कर कंपन लागे, साग त्राम न हृदय हरे, सुरत गई काली हूं तौले, इसे ना पावे रखियो करे, विसरत नाम ऐसे दुख लाग गए, जाम मार सुमारे नरक खरे, पूर्व जन्म को लेख न मिटई, जन्म मरे का को दोष तरे, बिन गुर बाद जीवन हो मरना, बिन गुर शब्दे जन्म जरे, खुशी खुआर पै रस भोगण, भोगट कर्म विकार करे, नाम सार लोभ मूल खोयो, सिर धर्म राय का दंड परे, गुरमुख राम नाम गुण गावे, जा को हर पर नदर करे, ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे, ते जग में गुर गोविंद हरे, हर सिमरहो गुर भजन सुमारहो, संगत हर जन पाओ करे, हर जन गुर प्रधान द्वारे, नानक तीन जन की रेन हरे, एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद चांदना चांदन आंगन प्रभु जीव अंतर चांदना आराधना आराधन नीका हर हर नाम आराधना त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ त्यागना मांगना मांगन नीका हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मैं जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना ए बिद तिसे परापते जाके मस्तक भागना कहो नानक तेस सब कुछ नीका जो प्रभु की शरणागना मारू महला पंजवा आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना रहाओ तुद आपत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संगावना संत कृपा ते हिरदे वस दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगस दुरमत दूख तजावना दर्शन भेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना नौ निध रिद सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना संत बेरा में थाव न कोई अवर न सूझे जावना मुए निर्गुण को कोई न रख संता संग सुमावना कहो नानक गोर चलत दिखाया मन मध्ये हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सबल जीवन सुन हर हर जप स जीवना अरहाओ पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख न लागे संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पद परमेसर फिर नांगे नहीं थीवना पोगना मन मध्य हरस संत संत मैं लीवना बिन तागे बिन सूई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस में राते बौड़ न कभू औखीवना मिलो तिस सर्ब निधाना प्रभु किरपार जिस दीवना सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तुए पीवना मारू महला पंजवा कार अठवा अंजुलिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस ग्रे बहुत तसे ग्रे चिंता जिस ग्रे थोरी सो फिरे परमहंता दो बवस्था तेजो मुक्ता तुई सुहेला पालिए ग्रे राज में नरक उदास करोदा बौद्ध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रहे अलिपता

बेणी संगम आठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहे अदले।

आपे बख्श लए सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई है। दुर्मत झूठी बुरी बुरियार, औगुणियारी औगुणियार, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुर्मत नाम न पाई है। औगुणियारी कंत न पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, फिर का साओ न जाने मूर्ख, बिन गुर बूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे, सीगार करे फिर खसम न पावे, गुणवंती सदा फिर रावे, सदगुरु मेल मिलाई है। आप हुम करे सा विख है, एक ना बख्श लए तुर लिख है, अन दिन नाम रते सद पाया, आपे मेल मिलाई है। हौमे तात मोरस लाई, गुरमुख लिव साची सहज सुमाई, आपे मिल है आपे कर विख है, बिन सदगुर बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किशु न जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उरतारे, सदगुर सेवा ते सुख पाया, हर के नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी, माया मोहे दुख माए समानी, बहुते पेख करे नह पाए, बिन सदगुरु सुख ना पाई है। किसनु कहिगे जा आप कराए, जित पावे तित राहे चलाए, आपे मेहरवान सुखदाता, जो पावे तिवे चलाई है। आपे करता आपे भुगता, आपे संजम आपे जूता, आपे निर्मल मेहरवान मसूदन, जेदा हुक्म ना मेटिया जाई है। सेवड़ पागी जिन्नी एको जाता, काट काट वस रहा जग जीवन दाता, एक ते गोबत प्रगट है आपे, गुरमुख प्रम पहु जाई है। गुरमुख हर जू एको जाता, अंतर नाम शब्द पछाता, जे तू दे सोई जन पाए, नानक नाम वडाई है। मारू महला तीजा, सच सारा ही गैर गंभीर है, सब जग है।

एक मूल लगे उन्नी सो पाया, डाली लागे तिन ही जन्म गवाया, अमृत फाल तिन जन को लागे, जो बोले अमृत बाता हे, हम गुण नाही क्या बोले बोल, तू सब ना देखे तोले तोल, जो पावे त्यों रखे रहना, गुरमुख एको जाता हे, जा तो पाणा ता सच्ची कारे लाए, अवगुण छोड़ गुणमाए सुमाए, गुण में एको निर्मल साचा, गुर के शब्द पछाता हे, जय देखा ते एको सोई, दूजी दुर्मुख सबदे खोई, एक समय प्रभ एक समाणा, अपने रंग सदराता हे, काया कामल है कुमलाना, मनमुख शब्द न बुझे ए आना, गुर प्रसादी काया खोजे, पाए जग जीवन दाता हे, कोड गई के पाप निवारे, सदा हर जीव राखे उर तारे, जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजीठे राता हे, मानमुख ज्ञान कथे ना होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरमुख ज्ञान सदा सारा हे, जो जुग एको जाता हे, मानमुख कार करे सब दुख सुबाए, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाए, गुरमुख शब्द वसे मन साचा, ससे वे सुख दाता हे, जय देखा तू सब नहीं थाई, पूरे गुरसा सोजी पाई, नामो नाम ते आगे सदा साध, यो मन नामे राता हे, नामे राता पवित्र शरीरा, बिन नावे डूब मुए बिन नीरा, आव है जाव है नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता हे, पूरे सदगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वडियाई, सहज रहे रंग राता हे, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्दे चूके नहीं फेरी, सा सलाहे साज समावे, जिन गुरमुख एको जाता हे, जिसनु नदर करे सो पाए, साचा शब्द वसे मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता हे, मारू सोल हे तीजा, आपे करता सब जस करना, जी जन सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरते सब अंतर, गुर के शब्द पछाता हे, हर के भगत परे पंडारा, आपे बगसे शब्द विचारा, जो तुझ पावे सोई करस है, सत्ते स्यो मन राता हे, आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नदरी तोले तोलो, जी जंत सब शरण तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता हे, जिसनु नदर होवे तुर तेरी, मरे न जम्मे चूके फेरी, साचे गुण गावे दिन राती, जुग जुग एको जाता हे, माया मोहे सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सुबाया, जुत पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता हे, पाप पुन वरते संसारा, हरक सोग सब दुख है पारा, गुरमुख होवे सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता हे, कीर्तन कोई मिटन हारा, गुर के शब्दे मुख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता हे, माया मोहे हर सो चित न लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे, मनमुख परम पुले पेह धारी, अंतकाल पछताता हे, हर के पाणे हर गुण गाए, सब केलभग काटे दूग सुबाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर से ती मन राता हे, जिसनु नदर करे सो गुण निद पाए, हो में मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एको दाता, गुरमुख विरली जाता हे, मेरा प्रभ निर्मल अत अपारा, आपे मिले गुर शब्द विचारा, आपे बगसे सदरड़ाए, मन तन साचे राता हे, मन तन मैला विज जोत अपारा, गुरमुख बूझे कर विचारा, होमे मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता हे, गड़काया अंदर बो हट बाजारा, तिस च नाम है अत अपारा, गुर के शब्द सदा दर सो है, होमे मार पछाता हे, रतन अमोल अगम अपारा, कीमत कमन करे बेचारा, गुर के शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता हे, सिमरत शास्त्र बहुत विस्थारा, माया मोह पसरिया पासा।

गुण में गुणी समाया, ए जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदे वसाई, कीमत कौन करे प्रातेरी, तू आपे सह।

भगत आरंग अपारा खिन में थाप्यो था पनहारा पारो तोल बेअंत स्वामी हुकुम मन भगती जाहे जे दे दर्स सोई तुद जाने ओ गुर के शब्द सारंग माने चदर स्वरूप से आना सोई जो मन तेरे पावी जाहे जे चीत आवे सो वे परवाह जे चीत आवे सो साचा साहा जे चीत आवे तिस पौ केहा अवर कहां किस की जाहे तिस ना बूझी अंतर ठंडा गुर पूरे ले टूटा गंडा सोरत शब्द हृद अंतर जागी अमेओ चोल चोल पी जाहे मरे नाही साध सदगी जीवे अमर पया अवनासी थीवे ना को आवे ना को जावे गुर दूर किया परमी जाहे पूरे गुर की पूरी बाणी पूरे लागा पूरे माए सुमाणी चढ़े स्वाया नित नितरंगा कटे नाही तो ली जाहे बारहा कंचन शुद्ध कराया नदर सरावनी सचड़ाया परख जाने पाया सरापी फिर नाही ताई जाए अमृत नाम तुम्हारा स्वामी नानक दास दा कुर्बानी संत संग मास पाया देख दर्शन ओ मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोलहे एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुर गोपाल गुर गोविंदा गुर दयाल सदा बख्शिंदा गुर शास्त्र सिमरत खड़कर्मा गुर पवित्र अस्थाना हे गुर सिमरत सब किल विख नासे गुर सिमरत जम संग न फासे गुर सिमरत मन निर्मल होवे गुर काटे अपमाना हे गुर का सेवक नरक न जाए गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याए गुर का सेवक साध संग पाए गुर करदा नित जी दा ना हे गुर द्वारे हर कीर्तन सुनिए सदगुर भेट हर जस मुख पणिए काल कलेश मिटाए सदगुर हर दरगह देवे माना हे अगमे गोचर गुरु दिखाया फूला मार्ग सदगुर पाया गुर सेवक को विघ्न ना भगती हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना हे गुर दृष्टाया सब नीटाई जल तल पूर रहया गोसाई ऊज ऊन सब एक समाना मन लागा सहज ध्याना हे गुर मिले सब तृष्ण बुझाई गुर मिले ने जो है माई सत संतोख दिया गुर पूरे नाम अमृत पी पाना हे गुर की बाणी सम है समाणी आप सुनी ते आप बखाणी जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे तिन पाया निचल थाना हे सगुर की महिमा सतगुर जाने चुग चुग करे सो आपन पाने साधु तूर जाते जन तेरे नानक सत कुरबाना हे मारू सोल हे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

आपे कड़कड़ सारना। एक उपाय वड़ दरबारी, एक उदासी एक करबारी, एक भूखे एक तृप्त अघाए, सबसे तेरा पारणा। आपे सत सत सत साचा, ओत पोत भगत संगराचा, आपे गुप्त आपे गए प्रगट, अपना आप सारना। सदा सदा सदहो मनहारा, ऊंचा अगम अथाओ अपारा, ऊने परे परे पर ऊने, ए चलत स्वामी के कारणा। मुगसाला ही सच्चे साहा, नैनी पेखा अगम अथाहा, करनी सुन सुन मन तन हरिया, मेरे साहेब सगल उदाहरणा। कर कर वेखे कीता अपना, जी जंत सोई है जपना, अपनी कुदरत आपे जाने, नदरी नदर निहालना। संसभा जे वैसे प्रापासे, आनंद मंगल हर चलत तुमासे, गुण गावे अनखद तुन बाणी, ते नानक दा चितारना। आमन जाना सब चलत तुम्हारा, कर कर देखे खेल अपारा, आ उपाय उपामनहारा, अपना किया पालना। सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, सदा सदा जाई बलिहारी, दुए कर जोड़ सिमरो दिन राती, मेरे स्वामी अगम अपारना। तुद बिन दूजे के सालाही, एको एक जपी मन माही, हुक्म बूझन पए निहाला, ए भगतां की कालना। गुर उपदेश जप के मन साचा, गुर उपदेश राम रंग राचा, गुर उपदेश टुटे सा बंधन, यो परम मोह पर जालना। जय राखे सोई सुखथाना, हे जे होए सोई पलमाना, बिन से बैर नाही को बैरी, सब एको है पालना। दर चूके बिन से अंधियारे, प्रड पए प्रापुरख निरारे, आव छोड़ पए सरनाई, जिसका साथ खालना। ऐसा कोवड़ भागी आया, आड़ पैर जिन खदम त्याया, ते जन के संग तरे सब कोई, तो परवार सुधारना। ए बख्शीस खदम ते पावा, आड़ पैर कर जोड़ त्यावा, नाम जपी नाम सहज समावा, नाम नानक मिले उचारना। मारू महला पंजवा, सूर देखना फूल गवारा, मिसन मुहारा चूड पसारा, जग में कोई रहन न पाए, नेचर एक नारायणा। गुरपुरे की पौसरनाई, मोसूसा परम मटाई, एको मंत्र दृढ़ाए औखद, सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसे वो देवा, सगर पत जा की कर दे सेवा, अनाथा नाथ दीन दुख पंजन, तो गुरपुरे ते पायना। होर द्वारा कोई न सूझे, तिर पवन धावे ता किसु न बूझे, सतगुर सौ भंडार नाम जिस, यो रतन तसे ते पायना। जाकी तूर करे पुनीता, तुर नर देव न पावे मीता, सत पुरख सतगुर परमेसर, जिस भेड़त पार परायणा। पार जात लोड़े मन प्यारे, काम तेन सोही दरबारे, तृप्त संतोष सेवा गुर पूरे, नाम कमाए रसायणा। गुर कै शब्द मरे पंच धातु, पए पार ब्रह्म होवे निर्मला तू, पार जा फेटे गुरपूरा, ता पारस प्रसिद खायना। कई बैकुंठ नाही लवे लागे, मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे, एकंकार स गुर ते पाईए, हौ बल बल गुर दरसायना। गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनु लाए लए सो सेवक, जिस बड़ पाग मथायना। गुर की महिमा वेद न जाने, तुश मात तू सुन वखाणे, पार ब्रह्म अपरम पर सदगुर, जिस सिमरत मन सीतलायणा। जाकी सोए सुनी मन जीवे,

आई तुम करो दया किरमायणा निर्गुण कौ संग लेओ रलाए कर कृपा मुहे टह ले लाए पखा फेरो पीसो संत आगे चरण तोये सुख पायना बहुत द्वारे प्रम प्रम आया तुमरी कृपा ते तुम शरण आया सदा सदा संते संग रख हो यो नाम दान देवायना पै कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना मारू सोलह महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरे धरती अर आकाशा सिमरे चंद सूरज गुण तासा पौन पानी बैसंतर सिमरे सिमरे सगल उपार जना सिमरे खंड दीप सब लोवा सिमरे पाताल पुरिया ससोवा सिमरे खाणी सिमरे बाणी सिमरे सगले हर जना सिमरे ब्रह्मे विष्णु महेसा सिमरे देवते कोड़ ते तीसा सिमरे जख दैंत सब सिमरे अगणत न जाई जस गना सिमरे पशपंखी सा भूता सिमरे बाण पर्वत अवधूता लता बली साग सब सिमरे हरब रया स्वामी सा मना सिमरे थूल सूक्ष्म सब जनता सिमरे सिर साधक हर मंता गोवत प्रगट सिमरे प्रा मेरे सगल पवन का प्रवतना सिमरे नर नारी आसरमा सिमरे जद जोश सा वरना सिमरे गुणी चित्र सा बेते सिमरे रैणी अर देना सिमरे घड़ी मूर्त पल निमखा सिमरे काल अकाल सोच सोचा सिमरे सुन सातर संयोगा अलख न लखिए एक खिना करन करामन गार सुवामी सगल घटा के अंतर जामी कर कृपा जिस भगती लाव जन्म पदार्थ सोजना जाके मन रूठा प्रव्यपना पूरे कर्म गुर का जप जपना सर्व निरंतर सुप्रा जाता बोड़ न जोनी परम रोना गुर का शब्द से मन जाके दुख दर्द प्रमता का पागे सुख सहज आनंद नाम रस आनंद बाणी सहित होना सो तनवंता जिन प्रोत्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाके मन उठा सो पूर कर्मा नाशिरा जल थल मैयल स्वामी सोई अवर न कही गए दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काट्यो प्रो सगला अवर न दिसे एक बिना ऊचे ते ऊंचा दरबारा तैन न जाई अंत न पारा गैर गंभीर अथा स्वामी अतुल न जाई क्या बिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवर न कोई बिया आद मध अंत प्रा तू है सगल पसारा तुम तना जम दूत किस निकट न आवे साध संग हर कीर्तन गावे सगल मनोरथता के पूर्ण जो श्रवणी प्रभ का जस सुना तू सबना का सबको तेरा सच्चे साहिब गैर गंभीरा कहो नानक सेई जन उत्तम जो पावे स्वामी तुम मना मारू महला पंजवा प्रसमरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरबाना हर दाता जी जंत पेखारी जान बांछे जा चंगना मांगो जन तूर परम गद पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे हर औखद हर निर्मल रापे मंगना श्रावणी सुनो बिमल जा स्वामी एका ओट तजो बिख कामी निव निव पाए लगो दास तेरे कर सुकृत ना ही संगना रसना गुण गावे हर तेरे मिटे कुमाते अवगुण मेरे सेमर सेमर स्वामी मन जीवे पांच दूत ताज तंगना चरण कवन जा बोत चरिये संत संग मेरे सागर तरिये अर्चा बंधन हर संत निवासी बौड़ जोनना नंगना दास दासन को कर लेहो गोपाला कृपा निधान दीन दयाला सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर मिल कदे न हो भी पंगना मान तन अर्प तरी अरागे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई पालक हत्यागी हो मे हंतना जल पूर्ण अंतर जामी खड़का रवे अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रवे असर मंगना जल कद पेखो प्रभ सुख सागर हर तोड़ भंडार नाही रतनागर आगे अगा कश्मित नहीं पाइये तो बूझे जिस किर पंगना जाती शीतल मन त ठंडा जन्म मरण की मिटवी डंजा कर गे काढ़ लिगे प्रभ अपने अमेओ तार धिर टंगना एको एक रवैया सब ठाई जिबन दूजा कोई नाही
ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਵਰਵਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੂਜੀ ਪਰਮੰਗਨਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਸਤਭਗ ਸੰਦ ਗੁਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਸੰਤ ਸੰਗਨਾ ਜੋ ਪੇਖਾ ਸੋ ਸਭ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਸੁਨਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਨੀ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮੇ ਕਰਾਇਓ ਸਰਣ ਸਹਾਈ ਸੰਤ ਹੈ ਤਨਾ ਜਾਤਕ ਜਾਤੇ ਤੁਮੇ ਆਰਾਧੇ ਪਤ ਪਾਵਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਏਕੋ ਦਾਨ ਸਰਸ ਗੁਣ ਨਿੰਦ ਆਣ ਮੰਗਰਨ ਹੇ ਕਿੰਚਨਾ ਕਾਇਆ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਲੱਗੀ ਲਾਗ ਸੰਤ ਸੰਗਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਬਣੀ ਗਰਬਾਣੀ ਮਨ ਨਾਮ ਜੀਠੇ ਰੰਗਣਾ ਸੋਲ ਹੈ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ ਅੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ ਅੰਧ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਪੁੰਚਨਾ ਮਾਰੂ ਸੋਲ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸੇਵਕ ਕੀਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੀਤਾ ਕਰਨ ਕਰਾਮਨ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਅਸਾੜਾ ਤੁਮੇ ਪਠਾਏ।

तर्हि केश गोवर्धनधारी मुरली मनोहर हार रंगा मोहन माधव कृष्ण मोरारे जगदीश हर जीव असर संहारे जगजीवन अवनाशी ठाकुर कड़कड़वासी है संगा तरणी तर ईस नरसिंह नारायण दाड़ा अग्रे प्रथम तरायण बामन रूप किया तुझ करते सभी सेती है चंगा श्री रामचंद जिस रूप ना रेखिया बरवाली चक्र पान दर्श अनुपया सहस नेत्र मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे महादेव नरंजन दाते वर्ण साको गुण अंगा मुकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण कमला कंत करे कंतूहल अंध बिनोदी ने संगा अमोघ दर्शन आजो नी संभव अकाल मूर्त जिस कदे नाही खो अवनासी अवगत अगोचर सब कुछ तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मस्कज पूर्म आज्ञा औतरासी केस चल्द करे निराले कीता लोड़े सो होएगा निराहारी निर्वैर सुमाया तार खेल चतर पोज खाया सावल सुंदर रूप बनावे बेन सुनत सा मोहेगा बनमाला विभूखन कमल नयन सुंदर कुंडल मुकुट बयन संघ चक्र गदा है तारी मां सारथी ससंगा पीत पीतंबर तेर पवन तनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी सारंग तर भगवान बीठला मैं गणतन आवे सरबंगा ने कंटक ने केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृतलोक पयाल समीपत अस्त्र स्थान जिस गए अपगा

इनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई। एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का। तुद बिन नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा। हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का। सास सास प्रा बिसरे नाही, आड़ पैर हर हर को त्याई। नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का। मारू महला पंजवां, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। चरण कमल हिरदे निधारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी। तान मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना। सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे सास सवारे। सास ग्रास समाले, करता कीता अपना पावना। जाते बिरता को नाही, आड़ पैर हर रख मन माही। साध संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुख नौ निध। सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा। सात सिमरत वेद बखाणी, जन्म पदार्थ जीत पुराणी। ताम क्रोध निंदा पर हरिये, हरसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती। जो जो जपे सो ही वड़ भागी, बौड़ ना जो नी पावना। जिसनु बिसरे पुरख बेदाता, जलता फिरे रहे निताता। अकिरत कणे को रखे ना कोई, नरक कोर में पावना। जियो प्राण तन तन जिन साजया, माद गर्भ में रख निवाजया। तेस्यो प्रीत शाट अनराता, काहू सिरे ना लावना। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, कड़कड़ वसे सबन के नेरे। हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जनाए तिसे जनामना। जाके मस्तक तुर लिख पाया, तेसी पुरख न व्यापे माया। नानक दास सदा सरणाई, दूसरवे ना लावना। आग्या दूसू सब कीने, अमृत नाम बिरले ही चीने। ताकि कीमत कहण न जाई, जड़कद ओई समावना। तोई भगत सोई वड़दाता, तोई पूर्ण पुरख बेधाता। बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना। मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदे कटे ना कटाए। सोई हुए जे करते पावे, कह के आव न्यामना। अंध कूबते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गंडे। कृपा तारखे करे अपने, मेरे साधु गोविंद त्यावना। तेरी कीमत कहण न जाई, अचरत रूप वड्डी वड्याई। भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जामना। मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला पहला, वेण गाहक गुण वेचिए, तौ गुण सहगो जाए। गुण का गाहक जे मिले, तौ गुण लाख विकाए। गुण ते गुण मिल पाईए, जे सतगुर माए सुमाए। मोल अमोल ना पाईए, वणजना लीजे हाट। नानक पूरा

चानन गुर मिले, दुख बिगजा ली ना ए पौड़ी, माया वेख ना पुल, तू मनमुख मूर्खा, जलद्या नाल ना चलई, सब झूठ दर्ब लखा, अग्ञानी अंत ना बूझई, सिर ऊपर जम खड़ग कलखा, गुर प्रसादी उभरे,

जगत ना चुर हीड़े सच चौ नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्सोन हर नाम समाने आपे भगती लायोन गुर शब्द निशाने सरमुख सदा सोने सचे दर जाने ऐथे उथे मुक्त है जिन राम पछाणे तन तन से जन जिन हर सेवया तिन हों कुरबाने सलोक महला पहला मैल कुचजी मरवड़ी काली मनो कसुद जे गुण होवन ता पिर रवे नानक अवगुण।

जगमय राम नाम हर निर्मला होरमैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरे गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म ने दुख जाए आपे दाता सुखे दा आपे देस जाए। नानक एवै जानिए सब केश तिसे रजाए पौड़ी हर ना बिना जगत है निर्थान बिन नावे तृप्त नाही दूजे परम भुलाया होमे दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाई है जे बहुत लोचाही आवे जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही आप करे किसे आखिए दूजा को नाही। सलोक महला तीजा इस जग में संति तन खटिया जिन्ना सदगुर मिलया प्रव्याय सदगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए। इत तन पाए पुख लथी तुख वसया मन आए जिन्ना को तुर लिखया तिनी पाया आए। मानमुखो जगत निर्तन है माया नू बिरलाए अन दिन फिरदा सदा रहे भुख ना कदे जाए सांत ना कदे आवई नै सुख वसे मन आए सदा चिंत चित वदा रहे सहसा कदे न जाए। नानक विण सतगुर मत पवी सतगुर नू मिले ता शब्द कमाए सदा सदा सुखमय रहे। सच्चे महे सुमाए महला तीजा जेने उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवर ना कोए। खाना शब्द चंगियाईया जिन खादे सदा तृप्त होए पहनण शब्द सुनाए है सदा सदा ओ उजला मेरा कदे ना होए। सहजे सतन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नौ शब्द सीगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनु आप वखा ले सोए पौड़ी अंतर जब तब संजमो गुर शब्दी जापे हर हर नाम ते आई है होमे अज्ञान गवापे अंदर अमृत पारपूर है चाख्या साध जापे जिन चाख्या से निरपो पे से हर अस्त्रा पे हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापे। सरोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना विहाजे कोए गुण का गाक नानका विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाईन जिसनु नदर करे महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप की ते करतार। नानक हुक्म मन्ने सुख पाई है गुर शब्दी विचार पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराओ। खरे परख खजाने पाईन खोटिया ना ही थाओ सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याओ अमृत का रस आया मन वस्या नाओ।

वाचनी सुखी हूं सुखसार। सो ब्राह्मण पला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार, हर साल आगे हर पड़े गुर के शब्द विचार। आया ओ प्रवान है जे कुल का करे उधार, अगे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार। होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार, अंदर सुख ना होवई मनमुख जन्म खुवार। नानक नाम रते से उबरे गुर के हेत अपार। पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म ना बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित पावे तित लाएदा गुरमुख हर सच्चा, सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा। गुरमुख सदा सलाई है सब तिहदे जचा, जो नानक आप नचाएदा तिव ही को नचा। सुध मारू वार महला पंजवा, दखणे महला पंजवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया डेई सिस उतार, नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। महला पंजवा निहु महिंजा तऊ नाल, ब्याने कूड़ा वे देख कपड़ पौ डरावणे जिचर प्री ना देख। महला पंजवा उठी चालू कंतड़े हो पसी तो दीदार, काजल हार तंबोल रस बिन पसे हावरा शार। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब तारिया, गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया। हरि आज्ञा होए वेद पाप पुन विचारिया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण विस्तारिया।

न जानही दुर्जन सेती नेहो तू कै गुण हरंग मानगी महला पंजवां नानक जिस दिन कड़ी ना जीवना विसरे सरे ना बिंद तेस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद महला।

कर हीड़े हिक आधार यो संतन की रेण जित लभी सुखदा तार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाई है बिन सदगुर मनुमा ना लगे धर्म तीरा कल अंदर है यो पापी मूल न तग अय कर करे सो अय कर पाए एक कड़ी मोहत ना लगे चारे जुग में सोदया विण संगत अंकार ना पगे होमे मूल ना छुटई विण साधु सत्संग तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन पंग जिन जान गुरमुख सेवया तिस कर दी बाण अपग हर कृपा ते सुख पाया गोर सतगुर चरणी लगे डखणे महला पंजवा लोड़िंदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर हठ मजाऊ सो तणी चौदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोए माओ डिणना तणी अपाह हियाओ मिंजा ठंडड़ा मुखों सच अलाए महला।

पंजवां प्रिया संदड़ी पोख मूलावण थी वितर जान मिठाई एक बेई पीड़े ना हुटे मोहल्ला पंजवां ठग्गा नियो मत रोड़ जान गंधर्बा नगरी सो कटाऊ डूए इस पंधाणु कर कणे पौड़ी अकर कला न पाई है प्रभ अलख अलेखं खड़ दर्शन परमते फिरे न मिल गए पेखं वर्त करे चंद्रायणा से किते ना लेखं वेद पढ़े संपूर्णा तत सार ना पेखं तिलक कडे स्नान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई विन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवे जिस तुर मस्तक लेखं तिन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं डकने महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ नाथिए कार कूड़ा भी छड समल सच तनी महला पंजवा हब सुमाणी जोत जो जलकटाऊ चंद्रमा प्रगट थी या आप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सुहावे नाम चौ आड़ पैर गुण गाओ नानक दरगे मनी है मिली निथावे थाओ पौड़ी बार पेख ना पाई है प्रभे अंतर जामी एक सहर जियो भारी सफरे निकामी मरता कुटंब स्यो नित गर्भ फेरामी फिरे गुमानी जग मैं क्या गर्भ दामी चलद्या नाल ना चल लई खिन जाए बेलामी विचरदे फिरे संसार मैं हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जान हर का सेवको हर तिसकी कामी डखणे महला पंजवा मुख अलाए हब मरण पाशानंदो कोए नानक तिना खाक जिन्ना यकीना एक स्यो महला पंजवा जानव संदो मंज पछाणु को हेकड़ो तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुर पेट।

पंडिया कवन कुमत तो लागे बूढ़ो गे परिवार सगल स्यों आराम ना जपो अपागे रखाओ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खाल चंदन जस पार राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा।

के शब्द सुनावेंगे। जीवित मरो मरो फुन जीव हो, पुनरप जन्म न होई। कौ कबीर जो नाम समाने, सुन रहा ले सोई। जो तुम को दूर करत हो, तौ तुम मुक्त बताव हो। एक अनेक हो रहे हो सगल में, अब कैसे परमाव हो। राम मोको तार कहाँ ले जई है, शुद्ध मुक्त कहाँ दो कैसी। कर प्रसाद मुए पाई है रखाओ, तारन तरन तबे लग कही है। जब लग तत् न जाने आ, अब तो बिमल पय काठी मैं। कहे कबीर मन माने आ, जिन गढ़ कोड़ किए कंचन के। छोड़ गया सो रामन, काहे कीजत है मन पावन। जब जम आए केस ते पकड़े, ते हर को नाम शिडामन रखाओ। काल अकाल खसम का कीना, यो परपंच बधावन। कहे कबीर ते अंते मुक्ते, जिन हृदय राम रसायन। देही गावा जियो तरम है तो, बसे पंच किरसाना। नैनु नगटू श्रवणु रसपत, इंद्री कया ना मानना। बाबा आप ना बसो एक।

गवाया। माया परम भुलाहेगा, ताना जोबन का गर्भ न कीजै। कद ज्यो गल जाएगा, जौ जम आए केस गए पटके, ता दिन किशना बसाएगा।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे, नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तलोचन, सदना सहन तरे, तय रविदास सुनो रे संतो, हर जीव ते सवे सरे, मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते भजा के रे, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तलता के, हर का हर ना जब सरसना, अवर सब शाढ़ बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माघी, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनागी, सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी, तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहमा देसो तू पल, हर जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सातन, तू सुनया तमरामा, बाबी का प्रयो बोले, कोकल बाणिया सातन सबरस चोले, अंक सुमाणिया हर अंक सुमाणी जा प्रथाणी, सा सुहागण नारे, नव कर थाप महल कर ऊचो, निज कर वास मुरारे, सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निस बसर रंग रावे, नानक प्रयो प्रोचवे बबीह, कोकल शब्द सुहावे, तू सुन हरस पिन्ने, प्रीतम अपने, मन तन रवत रवन्ने, कड़ी ना बिसरे, क्यों कड़ी बिसारी हो बलिहारी, हों जीवा गुण गाए, ना कोई मेरा हों किस केरा, हार बिन रहन ना जाए, ओढ़ गई हर चरण निवासे, पाए पवित्र शरीरा, नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावे, गुर शब्दी मन तीरा, बसे अमृत तार, बूंद सुहावनी, साजिन मेरे सहज सुपाए, हर स्यों प्रीत बनी, हर मंदर आवे जा प्रभावे, तन ऊबी गुण सारी, कर कर कंतर वे सुहागण, हौ क्यों कंत वसारी, उन कंशाए बरस सुपाए, मंतन प्रेम सुखावे, नानक वरसे अमृत बाणी, कर कृपा कर आवे, चेत बसंत फला पावर सुहावड़े, बन फूले मंज बार, मैं पिर कर बहोड़े, पिर कर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे, बिरे ब्रो तन छीजे, कोकल अंब सुहावी बोले, क्यों दुख अंक सहीजे, पावर भवंता फूली डाली, क्यों जीवा मर माए, नानक चेत सहज सुख पावे, जे हर वर कर तन पाए, वैसाख भला साखा वेस करे, तन देखे हर द्वार, आप हो दया करे, कर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुत बिन अड़ ना मोलो, कीमत कौन करे तुत पावा, देख दिखावे ठोलो, दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना, नानक वैसा की प्रपावे, सुरत शब्द मन माना, माहो जेड़ पला प्रीत क्यों बिसरे, थल तापे सर पार, सातन बिनो करे, तन बिनो करेंदी गुणसारेंदी, गुणसारी प्रपावा, साचे महल रहे बैरागी, आवन देता आवा, निमाणी नितानी हर बिन, क्यों पावे सुख मैली, नानक जिड़ जाने थी जैसी।

पाए, नित देवे चढ़े सुआया, अपरंपरे आपे था पुथापे, इस पावे सो होवे, नानक हीरा हीरे विद्या, गुण कै हार परोवे, गुण गुणे समान, मस्तक नाम निशानु, हसा समाया, चूका आमन जानु, सच साच पछा।

सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो तुखारी शांत महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद अंतर प्री प्यार क्यों पिर बिन जीविए राम जब लग दर्शन होए क्यों अमृत पीविए राम क्यों अमृत पीविए हर बिन जीविए तिस बिन रहन न जाए।

अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर सबदी हौ सतगुर कै बलिहारिये। सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करो प्रदाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध,

मार्ग पंथ चले गोर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक थुर नर मुनजन सब आया जिन परसिया गोर सतगुरु पूरा तिनके किल दिख नास गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खड़ दर्शन कर गए गोष्ट टोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हो।

गुर बचन नानक हर भगत लही, मिल आए नगर महाजना, गुर सदगुर ओट गही, तुखारी शांत महला पंजवा, एक ओंकार

माई संत संग जागी प्रेरंग देखे जपती नाम निधानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी प्यास बडानी अब गुर पायो हुए सहज सुखदायक।

पंच दास तीन दुखी एक मन अनाथ नाथ राख हो किरपाल रखाओ अनक जतन गमन करो खड़ कर्म जुत ध्यान धरो उपाव सगल कर हारियो नह उठे बिकराल सरन बंदन करना पते पाव हरण हर हर हर हरे एक तू ही दीन दयाल प्रभ चरण नानक आस।

सदगुर प्रसाद बिसर तनागे मन ते हरी आबे प्रीत महाप्रबल पही आन विखे जरी रगाओ बूंद कांत्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम वस्त्रित।

संत संग हर चरण बोहित उदरते लय मोर गर्भ कुंट मैं जिने तारियो नहीं बिखे बन मैं होर हर सगत सरन सुमरत।

कछ व्यापै संत संग व्यवहार रखाओ तर अनुग्रह आप राखियो नहीं उपजतो बेकार जिस प्राप्त हुए सिमरै।

किन्हीं लोग सुपारी, संतो बंजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चिड़िया निर्मोल, छूट गई संसारी रगाओ, ताते लाए तो सच लागे, साचे के व्योहारी, साची बस्त के

आया। जैसे खूंद कुमारी काम क्रोध तृष्णा के लीने, गतनी एक जानी फूटी आखें कछु ना सूझे।

रूप रंग रेस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध को ममता, कठिन पीर अद फारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, साबद सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरो महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कुमलानी, नेत्री तुंद करण पै बैरे, मनमुख नाम न जानी।

तहत नानक इहो जीओ कर्म बंद होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई। भैरो मोहल्ला तीजा जोगी गृही पंडित पेख तारी ए सूते अपने अहंकारी माया मद माता रहे आसोए जागत रहे ना मूसे कोए रहाओ। तो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओ वसगत करे सो जागे जो तत विचारे आप मरे अवरा नहीं मारे। सो जागे जो एको जाने प्रकृत छोड़े तत्।

होय। निकर वसे सहज सुभाय, गुरमुख नाम से मन आए, आपे वेखे वेखणहार, नानक नाम रखो उरतार। भैरो महला तीजा, कलयुग में राम नाम उरतार, बिन नावे माथे पावे शार। राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ। राम नाम जन पाले सोए, पूरे गुरते प्राप्त होए, हर का पाणा मन से जन प्रवाण।

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे, गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया, सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है, तेन निरकर वासा पाया, पूरे सदगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक की सिरकार एक, जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एक, ना ओ मरे न जाया। पैरो मोहल्ला तीजा, मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा, गुरमुख बूझे रोग गवावे, गुर शब्दी विचारा। हर जियो

कुजलय उबार खिन में भयान रूप निक्षा थम उपार अरणागस नहीं बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे गुर के शब्द होमे बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे।

इनका दर्श देख मन बिकसे खेन खेन तिस को होम बलिहारी हार हृदय जापो नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पे स्वामी।

को पेख ना बिना नर कही ना लेख बिन विद्या कहां कोई पंडित बिन अमरे कैसे राज मंडित बिन बूझे कहां मन ठहराना ना बिना सब जग बौराना बिन बैराग कहां बैरागी बिन हो त्याग कहां को त्यागी बिन बस पंच कहां मन चूरे ना बिना साध सड़गी चूरे बिन गुरु दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कौ कैसो ध्यान बिन

सवारी मिट्यो दुख अर सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरे ग्रस्त आनंद कर कृपा मोहे पेटे कंत रगाओ तब्त बुझी पूर्ण सब आसा मिटे अंधेर पए परगासा अनघ शब्द।

का स्वाव नाम न विसरे संत प्रसाद, नाम लयत अनहद पूरे नाद, प्रभु कृपा ते नाम नव निध पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई, तनवंते से ही प्रधान

ते सरणा इस दा सुख होए, पर कृपा जाको मिले सोए रहाओ, जाके करतब लखे ना जाहे, जाका परवासा सब कड़माहे, भगत भया साधु के संग, भगत आराधे अंत न रंग, देंदे टूट नही पंडार, खिन में ताप्यो था पनहार, जाग हुक्म न मिटे कोए, से पात सहा साचा सोए, जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमारा तिसकी पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, भैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन कहो संबंध चित आया, बूझ बहरा करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, दिखिया का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार, रहाओ सिर्फ माया रही व्याप, जो लपटानो ते दूग संताप, सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम रदान बड़भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रीझावे, स्वांग को तारे फिर पछतावे, मेघ की छाया जैसे बर्तनहार, ऐसो परपंच मोह विकार, एक वस्त जे पावे कोए, पूर्ण काज ताई का होए, गुर प्रसाद जिन पाया नाम, नानक आया सो परवान, भैरो महला पंजवा, संत की निंदा जो नी पवना, संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दुख सहाम, दान दैत निंदक हो जाम, संत संग करे जो बाद, तिन निंदक नाही किस साध रखाओ, पद की निंदा कंध छेदावे, पद की निंदा नरक पुंचावे, पद की निंदा गर्भ में गले, पद की निंदा राज ते टले, निंदक की गदकत हु नाहे, आप बीज आपे ही खाहे, चोर जार जुआर ते बुरा, अणहुंदा पार निंदक सिर तरा, पार ब्रह्म के भगत निरवैर, तो निस्तरे जो पूजे पैर, आद पुरख निंदक भोलाया, नानक किरत न जाए मिटाया।

नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाक मन वसिया प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जे दे वे नाओ, भैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना, अनक पाव जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करामन गार स्वामी।

त्यागी विरला कोए, हर हर नाम जपे जन सोए रहाओ। अंग बुद्ध का छोड़या संग, काम क्रोध का उतरिया रंग। नाम त्याए हर हर हरे, साजना के संग निस्तरे। बैरी मीत होए सम्मान, सर्व में पूर्ण भगवान। प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया। कर कृपा जिस राखे आप, तोई भगत जपे नाम जाप। मन प्रगास

नृत्य नाट्य सुख नाई बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो सासंग पागे वड़पागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन माल पिता सुध बनता बंधन कर्म तर्म हो करता बंधन काटनहार मन वस तौ सो पावे निज कर बस सब जाजक प्राजे मनगार गुण निदान बेंत अपार जिसनु कर्म करे प्रव्यापना हर घर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कौ नानक तुमरी शरणाई ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई। भैरो महला पंजवा गुरमुख त्यागो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कार कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ। रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औषध मन पीतर सारे गुर पेड़ मन पया आनंद सर्वन दान नाम भगवंत जन मरण की मिटी जमत्रास साध संगत हूंद कवन विगास गुण गावत निचल विश्राम पूर्ण होए सगले काम दुलभ दे आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभु कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी। भैरो महला पनवा तब ते ऊंचा जा का नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ जे सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख बसे मन आए सिमर मना तू सा

आराम नाम रिद दियो निवास सदा आनंद नाही किज सोग दुख दर्द न व्यापे रोग सब के तेरा तू करने हार पार ब्रह्म अगु अपार निर्मल शोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी जल थर महील रविया सोय नानक सब कुछ प्रवते होय भैरो महला पंजवा मन तारा ताराम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूर्ण करने आठ पैर गावत भगवंत सब गुर दीनो पूरा मंत सोवड़ पागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरे संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी सो पतवंता जे आप शानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल निरहिन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण हृदय माए निवासा कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभु की सरना आप वित पाम सब कीने राम रसायन रसना चीने

चरण निवास निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ हरहाओ हर सिमरत किस चाख ना जोह हर सिमरत दायत दियो ना पोह हर सिमरत मोह मान ना बधे हर सिमरत गर्भ जोन ना रुद्ध हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माए अकेला जात अजात जपे जन कोए जो जापे किसकी गद होए हर का नाम जपिगे।

निमखना छोड़े सदगी साथ हर सा प्रीतम अवर ना कोय सार समाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन इसकी धार प्रभु का मन जोर एक बिना।

का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाव विर माया नाव मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाव मेरे बंधपन।

अरे आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना अरहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राय जीतो बूढ़े हारो तिरै गुर प्रसादी पार।

रह पंकज मैं लियो निवास द्वादश दाल अब अंतर मंत जय पौड़ी श्री कमला कंत अर्ध उर्ध मुगला गोकाश ठुंड मंडल मैं कर परगास ऊगा सूरज।

विद्या कोट सबे गुण कहे, तउ पार ब्रह्म का अंत न लहे, बामन कोट जाके रुमावली, रामन सयना जयते शली, सहज कोट भो

मनसा हरै तै कबीर सुन सारग पान दे अपय पद मंग उदान भैरो बाणी नाम दियो जियो की कार पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरी परमे नाम दियो इहो करना अंत रूप तेरे नारायण पर तान पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी जो

ज्यों जो नामा हर गुण उचरै भगत जना को देवरा फिरे भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखा बंद जल सेती काज जैसी

पड़े नहीं हम ही पचकारे। राम कहे करताल बजावे चटिया सबे बिगारे। राम नामा जपबो करे हिरदे हर जी को सिमरन।

पाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा घर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजायला गरड़ चढ़े गोविंद आयला आपने।

नाम दियो सब रहया समाए, मिल हिंदू सब नामे पै जाए, जो अब की बार न जीव गाए, ता नाम देव का पतिया जाए, नामे की कीर्त रही संसार, भगत जनाले उदरिया पार, सगल कलेश निंदक पया खेद, नामे नारायण नाही भेद, कार दूजा जो गुरदेवता मिले मुरार, जो गुरदेवता उतरे पार, जो गुरदेव ता बैकुंठ तरे, जो गुरदेवता जीवत मरे, सत सत सत सत।

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेवरांगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ भागे पौन।

जग जीवन स्यों आप चित लाए, मन तन हरिया सहज सुपाए, नानक नाम रहे लिवलाए। बसंत महला तीजा भगत वछर, हर वस्ते मन आए, गुर कृपा ते सहज सुपाए, भगत करे विचों आप खोए, तद की सात मिलावा होए। भगत सोह है सदा हर प्रद्वार, गुर कह खेत साचे प्रेम प्यार, अरहाओ भगत करे सो जान निर्मल होए, गुर सबदी विचो होमै खोए, हर जीव आप से मन आए, सदा सांत सुख सहज समाए, साच रते तिन सब

गुर सबदी हर चेत सुपाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुमरे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम संत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए।

मुंह सत्संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हारस पुंज रहाओ सत्संगत साध दया कर मिल हो शरणागत साधु पंज हम डुबदे पात्र काढ़ लेहो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पंज हर उस्त तारो रिद अंतर स्वामी सत्संगत मिल बुद्ध लाइ हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विटों कुम वाइ जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देवो हर लाइ जन नानक मन तन अंध पया है गुर मंत्र दियो हर पंज बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सेव कर नमस्कार आज हमारे मंगल चार।

प्रभु देहे साध संगत में यो विश्राम सदा हृदय जपी प्रभ तेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ मैं समाहे।

या की गत मित कही ना जाए, काट काट रया समाए, या के भगत आनंदमय, या के भगत को ना ही खै, या के

दान तेरिया संत जिना की बाशो तूर जप नानक स्वामी सद हजूर बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रखवाले माई बाप जाके सिमरन नहीं संताप खसम त्याई एक

माया सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जब जीवे नानक राम नाम, सारुत सुहावी जिद हर चित आवे, बिन सतगुर दिसे बिललांती सागत, फिर आवे जावे रगाओ, से तनवंत जिन हर प्रवरास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पै बिन से निरपय पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया, साध संगत प्रभ कियो लिवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जलथा

तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद भावे जिसनु तू रंग धरता। तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू समर्थ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा। तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना। कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना। बसंत हिंडोल महला पंजवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहंग मनी। पिता पार ब्रह्म प्राप्त हनी मुए निस्तारो निर्गुणी रहाओ। ओपत परलो प्रवते होवे ए बिचारी हरजनी। नाम प्रभु के जो रंग राते काल में सुहिए से गनी। आवर उपाओ न को सूझे नानक तरिगे गुर बचनी। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद राग संत हिंडोल मोहल्ला नावा। साधु इव तन मिथिया जानो या पीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो। रघाओ इव जग है संपत।

काम रखाव यो जग तुए का पहार ते साचा मान्या के विचार तन दारा संपद ग्रेहे असंग न चाले समझ लेहे एक भगत नारा।

कज बिगड़ो नाहन अज हो जाग रहाओ सब सुपने कह यो जग जान बिन से शिन में साची मान संग तेरे हर बस्त नीत निज बासर पजताहे मीत बार अंत की होए सहाए कहो नानक गुणता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां कार पहला दो तुकियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला।

मन पूलो समझ सब साच नाए, गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ। मन पूलो परमस पावर तार, बिल बिरथे चाहे बहु विकार, मैग जो फासस कामहार, गड़बंधन बाध्यो शीस मार, मन मुग्धो दादर भगत हीन, दर पलट सरापी नाम बीन, ताके जात न पाती नाम लीन, सब दुख सुखाई गुणे बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हरस राखे पत न साख, तू आपे सुरता आप राख, हर तारण देखे जाने आप, आप पुराए किस कहो जाए, गुर मिले बिरथा कहो माए, अब गुण छोड़ो गुण कमाए, गुर शब्दी राता सच समाए, सदगुर मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो में कड्डे तोए, सदा मुक्त बंधना सके कोए, सदा नाम खाने और न कोए, मन हर के पाने आवे जाए, सब में एको केश पहन न जाए, सबको वर्ते हुक्म सुमाए, दूसू सब तिसर जाए, तू अपुल ना पुलो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे।

एक नराल अकथ कहानी एको शब्द सच्चा निशान पूरे गुर ते जाने जान एको धर्म दृढ़ सच कोई गुरमत पूरा जुग जुग सोई अनहद राता एक लिवतार ओ गुरमुख पावे अलख अपार।

तै लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना विचारे कोए। एवद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास त्याय प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा, अनक जन्म प्रमे जोन माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद पज

दू सुख बंधो संसार मन उदरण का साजनाहे पाबंदन नित पौत जागे ईठ मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खावे जाके तीने होत बेकार ते छोड़ चलिया खिण मैं गवार माया मोह मोह भरमिया किरतरे कर करमिया करने।

देव जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, ए देही के अधिक काम। कह कबीर पज राम नाम, जो एक खसम है जाया।

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माघ जहां जाएगे तै जल पखान तू पूर रहो गे सब समान वेद पुराण सब देखे जोए ऊहां तो जाइए जो ईहां ना होए सतगुर मैं बलिहारी तोर जिन सकल बिकल प्रम काटे मोर रामानंद स्वामी।

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरे न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर।

के निगट निगट हर निगट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात ते हर के जान हर स्यो रल मिले जैसे जान नानक सरले सल मिला आरंग महला चौथा जापमान नर हरे नर हर स्वामी।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान, सहसृढ़ का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी, जन नानक नाम लए ता जीव है, जो चातक जल पिए तृप्तासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राए, सो जन राम नाम लेव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जना की पत राखे, वेत कलयुग अगे, जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यों जल की, सबल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्व प्रदपालक, भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी, तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत, निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे, तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक ते लाख लाख ते एक।

प्रगाध पयो हर ओआ की कही न जाए कहावत आन उपाव जेते किश कही है ते ते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रे पीतर प्रट्यो अगम जैसे प्रखावत निर्गुण निरंकार अवनाशी अतुलो तुल्यो न जावत कहो नानक अजर जिन जरिया तेसी को बन आवत सार्ग महला पंजवा बिखई दिन रैन ए भी गुदारे गोविंद न पजे अंग बुद्ध माता जन्म जुए ज्यो हारे हरहाओ नाम अमोला प्रीत न तेस्यो पर निंदा हित कारे छापर बांस वारे तिन को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन ते डारे ओडे बस्तर काजर में परिया बौर बौर फिर चारे काटे पेड़ डाल पर ठंड हो खाए खाए मुस्कारे गिरो जायर सातल परयो छिटी छिटी सिर पार निर्वैर संग वैर चाय पहुंच न सके गुवारे कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार सार्ग मोहल्ला पंजवा अवरसा भूले प्रमत न जानिया एक सुधाखर जाके हिरदे वसिया तिन बेदे तत् पछानिया रखाओ प्रविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग बचारा जौल उड़दे नहीं पर गासा तौलो अंध अंधारा जैसे धरती साधे बहुबिद बिन बीजे नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त न होई गए टूटे नहीं अब मानने नीर बलोवे आत्श्रम पावे नैनू कैसे रीसे बिन गुर पेटे मुक्त न काहू मिलत नहीं जगदीश खोजत।

खोजत ए बिचार्यो सर्व सुख हर नामा। कहो नानक ज पयो प्राप्त जाके लेख मथामा। सारग महला पंजवा आनंदन राम के गुण कहिए। सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाशत फल लहिए। रघाव आव संत प्राण सुख दाते सिमरे प्रभ अविनाशी। अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो कटवासी। गावत सुनत सुमावत सरदा हर्ष पी वडभागे। कल कलेश मिटे सब तन ते आराम नाम लिव जागे। काम क्रोध चूड़त निंदा हर सिमरन बंधन टूटे। मोह मगन अंग अन ममता गुर कृपा ते छूटे। तू समर्थ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा। पूरयो सर्व मैं ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा। सारग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण। जाके संग पार ब्रह्म त्याईये उपदेश हमारी गत करन। अरहाओ दुख रोग पै सगल बिनासे जो आवे हर संत सरन। आप जपे अवरे नाम जपावे वड समरथ तारन तरन। जाको मंत्र उतारे सहसा ऊने को सुबर परन। हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन। भगतन की टहल कुमावत गावत दो काटे ताके जन्म मरन। जाको पयो कृपाल बीठला तेन हर हर अजर जरन। हर से अगाने तेज समाने मुक्ते नाही जात बरन। गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जाप उदरन। सारग महला पंजवा गायो री मैं गुणनिद मंगल गायो। पले संजोग पले दिन अवसर जौ गोपाल री जायो। रहाओ संत चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा। साधे मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया। भगते दर्श देख

एक पलक सुख साध समागम कोट बैकुंठे पाए रघाव दुलाभ दे जब होत पुनीता जंग की त्रास निवारे महापत्ते पादक उतरे हर नामा उतारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जुदरिया मान करो अभिमाने बोलो पूल चूक तेरी प्रेत्रिया रघाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहा दे नाओ बलिहारी रखाओ चौ दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी आदे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाँ नाही किश मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयो घर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा आप मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण समरत स्वामी और एक स्ते मेरी गाते रघाओ देखे नाना रूप हो रंगा अन नाही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रम तो हार जो परे हो तो गुरमिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगानी राते सारग महला पंजवा अब मोहे लभ देव है घर टेका गुरदयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रखाओ काटे अज्ञान तेमर निर्मलिया बुद्ध विगास बबेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेव कु ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तय ही आयो सभी एक एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मान एक ही प्रेम मांगे पेख आयो सब थान देश प्रे रोम ना समसर लागे रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन पेसो दिष्ट ना करे रुचांग हरस चाहे प्रे प्रेम कुटेर ज्यो आल कमला लोभ अंग गुण निधान मन मोहन लालन

आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना, साध कृपाल दयाल पय है, यो छेद्यो दुष्ट बेगाना रखाओ। तुम ही सुंदर तुम्हें सियाने, तुम ही सुगर सुजाना, सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक, निमकन कीमत जाना। तुम ही नायक तुम्हें शत्रपात, तुम पूर रहे भगवाना, पावो दान संत सेवा, हर नानक सब कुरबाना।

कहो नानक मैं अतुल सुख पाया, जन्म मरण पय लाते, सारग मल्ला पनवा अरे मूड़े, आन कहे कत जाई, संग मनोहर अमृत है रे, भूल भूल बिखाई रखाओ, प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते, ते सिंहर च नहीं राई, मोन सिंह बाबर मन मोयो, झूठ ठ गौरी पाई, पयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन सिंह बने आई, सगल निदान करे मैं पाए, कहो नानक जोत समाई, सारग महला पंजवा ओ अंग प्रेपीत चीत पै लरिया, जो तो बचन दियो मेरे सदगुर, तो मैं साज सी गरिया, अरगाओ हम भूले तुम सदा अपूला, हम पतत तुम पतत उदरिया, हम नीच बिरख तुम मैं लागर, लाज संग संग बिसरिया, तुम गंभीर तीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया, गुर कृपाल नानखर मिलो, तो मेरी सूख से जरिया, सारग महला पंजवा, मन ओए दिनस तन परवाना, सबल ते करी संयोग सुहावे, सदगुर संग ज्ञाना रखाओ, तन सुभाग तन सुहागा, तन दिल जिन माना, यो मन तुमरा सब गृह तन तुमरा, हियो कियो कुर्बाना, कोट लाख राज सुख पाए, एक निमक पेख दिष्टाना, जो कहो मुखो सेव के बैसिए, तुग नारग अंत न जाना, सारग महला पंजवा, आप मोरो सहसा दुख गया, और उपाव सगल त्याग छोड़े, सदगुर शरण पया, अरहाओ सर्व सिद्ध कार्य सब सबरे, अंग रोग सगल की खया, और पराध खिन में खौ पई गए, गुर मिल हर हर कहया, पंच दास गुर वसगद कीने।

प्रभ मेरो एक पुत सदा सहाई, मन मोर मेरे जी को प्यारो, कमन कहा गुण गाई रहाओ। खेल खिलाए लाड लाडावे, सदा सदा अनदाई, प्रद पाले बारक की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसर न कब हो जाई। कहो नानक मेल संत संगत ते, मगन पै लिवलाई, सारग महला पंजवां।

जब भूखो तब भोजन मांगे हकाए सुख कनारे तब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटकत हुए रवारे कवन बसेरो ता दासन को

गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहज सहज सुमायो करना आप करामन आपे कहो नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपूरे नमस्कारो रघाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई को नानक साज विचारो सारग महला पंजवा बेन प्रभ रहन न जाए करी सर्व सुख ताहू के पूर्ण जाके सुख है हरी रघाओ मंगल रूप प्राण जीवन तान सिमरत अंध कना वड समर्थ सदा ससंगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा मान पवित्रा।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद अंध गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाया, सारग महला पंजवां, हर के नाम की गद छांडी, वेद पुराण सिमर साधु जन, खोजत खोजत कांडी रहाओ, शिव ब्रांच अर इंद्र लोक, तामे जल तो फिरिया, सिमर सिमर स्वामी पैसी तल, दुख दर्द प्रम गिरिया, जो जो तरयो पुरातन नवतन, भगत पाए हर देवा, नानक की बेनंती प्रभ जियो, मिले संत जन सेवा, सारग महला पंजवां, जे वे अमृत गुण हर गाओ, हर हर बोल कथा सुन हर की,

मुक्त को दाता एक सस्यों लेवलाओ कहो नानक ताकी शरणाई देत सगल अपयाओ। सारग महला पंजवा होती नहीं कमन कज करनी ए ओड पाई मिल संत गोपाल एक की सरणी रघाओ। पांच दोख शिद्र या तरम है बिखे ब्याध की करनी आस अपार दिनस गण राखे ग्रस्त जात बल जरणी अनाथे नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पय हरणी मन बांछित चितवत नानक दास।

समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लहो हर दे आराधो छुटके आमन जानी उदम सगत

छोड़ो कपट होए निर्वैरा तो प्रसंग निहारे सचतन वणजो सचतन संचो कबू न आवो हारे खात खर्चत किश निखुटत नाही।

शरीर सब हुट्यो, साध गयो तत घाट रहाओ, अनास रियान उधरले पुखे माया गईया हाट। तिल भग करत करत पछतावे, कभू न साके शांत, निंदक जमदूती आए संघारियो, देवे मूंड ऊपर मटाक। नानक आपन कटारी आपस को लाई, मन अपना कीनू फाट, सारग मोहल्ला पंजवा टूटी, निंदक की अद बीच। जनका राखा आप स्वामी, बेमुख को आए पहुंची मीच। रहाओ उसका कहया कोई न सुनई,

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

ते सफल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चल नीव तराई सदगुर, कब हूं डोलत नाही, गुर नानक जा पय दयारा, सर्व सुखानंद पाही, सारग महला पनवा निभगी नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए नितन, बिखे माए अले परगाव, जी जंत सगर संतोखे अपना प्रत्याए, रतन जन्म अपार जीतेओ बौड़ जोन ना पाए, पय कृपाल दयाल गोविंद पया।

मोह मद मातो सिमरत ना गए हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

मन मेरे हर की अकथ कहानी, हरिंदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विरले जानी रखाओ, हर गैर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करे पाए दूजे, बिन शब्दे बहुरानिया, हर नाम नावे सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल न होई, ना बिना सब जग है मैला, दूजे परम पद कोई, क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी, मैं ता बूझ न पाई, होए दयाल कृपा कर हर जियो, नम होए सकाई, सच्चा सदाता कर्म विदाता, जिस पावे ते नाए लाए, गुरु द्वारे सोई बूझे, जिसनु आप जाए, देख विस्माद जो मन नहीं चेते, आवा गौण संसारा, सतगुर सेवे सोई बूझे, पाए मोह द्वारा, जेंदर सूझे से कदे ना बिगाड़े, सतगुर बूझ बुझाई, सत संयम करनी किरत कमावे, आवन जान रगाई, थे दर साचे साज कमावे, जिन गुरमुख साज

आपो देव संदेशा, देव संदेशा प्रभ जीव कैसा, कै मोहन परवेशा, अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई, थान तनंतर देशा, बंधन ते मुक्ता कड़कड़ जुगता, कै ना सकोहर जैसा, देख चरित नानक मन मोहयो,

आधार नानक आप सदीव है। पूरा जिस पंडार वड्डा कर सालाही है। अंत न पारावार पौड़ी हर का नाम निधान है। सेवे सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पद स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई। मत पंखे रूवस होए सदगुरु ते आई। नानक आप दयाल होए नामे लिवलाई। श्लोक महला दूजा तिस ज्यों कैसा बोलना जे आपे जाने जान तीरी जा की ना फिरे।

दुख ज जम्मण दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करे पुकार दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकले हो कोए दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए दुख की अग्गी मा

नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जैसी परम पवे संसार अमृत बाणी तत्व खाणी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई हुक्म साज हुक्मे विच रखै।

काम क्रोध तृष्णा उचरे, दसवीं दसे द्वार जे ठक, एकासी एक कर जाने, द्वादशी पंच वसगत का रख, तो नानक मन माने।

फिर होए ना बिनासा, हर से ती रंग रव रहे सब सास गिरासा, हर का रंग कबे ना उतरे गुरमुख परगासा, ओए किरपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होम में बहुत अहंकार, सबदे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुआर, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुर का पाणा मन ले शब्द रखे उतार। महला तीजा, सो जापो तब सेवा चाकरी जो खसमें पावे, आपे बगसे मेल लय आपत गवावे, मिलिया कदेरा विछड़े ज्योति ज्योत मिलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी सी

आपे सृष्ट उपायन आप करे विचार नानक किसनु आखिए सा वरते आप सत्यार महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए नानक हो बलिहारी तिन कौ जिन हर मनवस्या सोए पौड़ी आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन कौ चित गढ़ मंडप सवारिया वल वंच कर उपाव

दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर ते टिके, होर ते प्रगट ना होए। अन्ने वस माणक पया, घर घर वेचण जाए। ओना परख ना आवई, अड ना पल्ले पाए। जे आप परख ना आवई, ता पारखियां तावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए, ता वथ लहे। नौनद पल्ले पाए, कर होंदे तान जग भुखा मोआ। बिन सतगुर सोझी ना होए, शब्द शीतल मन तन वसे। तिथे सोग वियोग न कोए, वस्त पराई आप गर्व करे। मूर्ख आप गणाए, नानक बिन बूझे किने न पायो। फिर आवे जाए महला तीजा, मन अंध पया मिलिया हर प्रीतम। सरसे सज्जन संत प्यारे, जो तुर मिले न विछड़े कबू। जे आप मिले करतारे, अंतर शब्द रविया गुर पाया। सगले दुख निवारे, हर सुख दाता सदा सलाही। अंतर रखा उर तारे, मानमुख तिनकी बखीली के करे। जे सच्चे शब्द सवारे, ओना दी आप पद रखसी मेरा प्यारा। शरणागत पए गुरुद्वारे, नानक गुरमुख से सुहेले पए। मोखूजल दरबारे पौड़ी, इस्त्री पुरखे बो प्रीत। मिल मोह वधाया, पुत्र कलत्र नित विख। विकसे मोय माया, देश परदे तन चोराए। आण मोय पाया, अंत होए वायर विरोध। को सके ना छिड़ाया, नानक विण नावे त्रिग मोह। जित लग दुख पाया, श्लोक महला तीजा। गुरमुख अमृत नाम है, जित खादे सब भुख जाए। तिसना मूल ना होवई, नाम से मन आए। बिन नावे जे होर खाना, ते त्रोग लगे तन ताए। नानक रस कस शब्द सलाहना, आपे लए मिलाए महला तीजा। जिया अंदर जियो शब्द है, जित सह मेला वा होए। बिन शब्दे जग अनेर है, शब्दे प्रगट होए।

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरमुख जिना शब्द मन वसे, दर गए मोह द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद। तेज क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद। महला चौथा, सावन आया चिमचिमा, हर गुरमुख नाम ते आए। दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मीहो मुठा शह बरलाए। सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोहल लाए। हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे ताए। हर से ते आओ संत जनो, जो अंते लए छिड़ाए। हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या, तिना दुख भुख ले जाए। जन नानक त्रिवते गाए गुण, हर दर्शन दियो सुपाए। पौड़ी गुरपूरे की दात, निध देवे चिड़े सवाइया। तो देवे आप दयाल, ना शपेश पाइया। हिरदे कबल प्रगास, उन मन लिव लाइया। जे को करे उस दी रीस, सिरशाई पाइया। नानक अपड़ कोई ना सकई, पूरे सदगुर की वड्याईया। श्लोक महला तीजा, अमर वे प्रवाह है। तिस नाल स्याणप ना चलई, ना हुजत करनी जाए। आव छोड़ सरनाए पवे, मन ले रजाए। गुरमुख जम डांडन लग गई, होमे विच्चों जाए। नानक सेवक सोई आखिए, जे सच रहे लिवलाए। महला तीजा, दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत स्याणप होमे मेरी।

कहां नार गर्भस थोरी बात, मंद नाज टका चार गांठी, आइडो टेडो जात रखाओ, बहुत प्रताप गांव सो पाए, दो लख टका बरात, दिस चार की करो साहिबी, जैसे बनघर पात, ना को ले आयो यो तन, ना को ले जात, रावण हूं ते अलक शत्र पा, हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिन को कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिलात, मात पिता बंता सुत संपत, अंत न चलत संगात, कहे कबीर आराम पज बौरे,

माया कारण श्रम अत करै सो माया ले गाडे तरे आत संचे समझे नहीं मूड तान तरती तन होए गयो तूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरे साध संगत कबहू नहीं करे कहत नाम जो ताची आन निरपय होए पजिए भगवान बदो की ना हो माधो मोस्यों ठाकुर ते जान जानते ठाकुर खेल परे है तो स्यों रहाओ आपन देव देवरा आपन आप लगावे पूजा जल ते तरंग तरंग ते है जाल कहन सुन को दूजा आपे गावे आपे नाचे आप बजावे तूरा कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर जन ऊरा तू पूरा दास अनिम मेरो निज रूप दर्शन निमख ताप त्रिमोचन परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ मेरी बंदी भगत छिड़ावे बंदे भगत न छूटे मोहे एक समय मोको गए बंद तौफ मैं पो जवाब न होए मैं

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंग गुर प्रसाद खाना पीना हसना सोना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहे।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जेही रुत काया सुख तेगा, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिरनावे रुत केही। मलार महला पहला।

जिस में नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस सचै नाय मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हथदान नित नित लेहो

मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागे साधे गर्स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी।

सत्रे सदा अलागर हे निर्वाण तो पंडित दरगह परवान सबना मैं एको एक वखाणे जा एको वेखे ता एको जाने जा को बगसे मिले सोए ऐथे उथे सदा सुख होए कहत नानक कवन विद करे क्या कोए तोई मुक्त जा को कृपा होए आनदन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्राम प्रा जोन मन मुख परमाई जम काल मारे निदपात गवाई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रा मिलया मैल कर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदले जाए रखाओ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हार हर उतार भवजर शब्द लंघा मनहार दर सचे दिसे स्तियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हो में ममता बहु मोह बधाया दूजे पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिए सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवत मुक्त गुरमती लागे हर की भगत अनदिन सद जागे सतगुर सेवै आप गवाए हाँ तिन जन कै सद लागो पाए हों जीवा

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, अनदन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लबटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए।

नींद न पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सो पाए, नामहीन बिनसे दुख पाए। तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुबद थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार। बिख्या मैर बिख्या वापार, मार जन्म

खाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए। करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लाभ हो पूघर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक

हम एक गिरत बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रहाओ। उनके संग मुए प्रवचित आवे, संत प्रसाद मुए जागी। तुन उपदेश पए मन निर्मल, गुण गाए रंग रंगी। इहो मन देख किए संत मीता, किरपाल पए बड़भागी। महा सुख पाया बन ना साको, रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवा, माई मोहे प्रीतम देहु मिलाई। सगल सहेली सुख पर सूती,

दुश्मन हते दुखी सा व्यापे हर सरनाई आया। राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया। कर किरपा केलविख सब काटे नाम निर्मल मन दिया। गुण निधान नानक मन वसिया

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पय सागर, हर नानक चरण तिहाई। मलार महला पंजवां, कानखार बरस सगल जग छाया। पय किरपाल प्रीतम प्रा मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी, पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरण मारे, बौर न कतहु ताया। मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवा, बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन। चित्ते उलास आस।

सेवक पूर्ण भगत चेरानो रहाओ। ए त्योत डोल डोल शरम पायो, तान तान होत बेरानो। लोग दोराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रवतार हो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवां, दुष्ट मोए बिख।

गाई प्रयो प्रयो करे सबे है जेती गुर पावे प्रयो पाई प्रयो नाले सदगी सच संगे नदरी मेल मिलाई सब में जियो जियो है सोई काट काट रहा समाई गुर प्रसाद कर ही परगासया सहजे सहज समाई अपना काज सवार हो आपे सुखदा ते गोसाई गुर प्रसाद कर ही पिर पाया तो नानक तबत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनक जतन कर रहे न पावे आच काच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार।

मुक्त होए पाए मोह द्वार। मन रे सतगुर सेव समाए वडे पागुर पूरा पाया हर हर नाम त्याए रहाओ। हर अपने भाणे सृष्ट उपाई हर आपे दे आधार। हर अपने भाणे मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार। हर के भाणे सतगुर पेटिया सब जन्म सवारनहार। वाहो बाणी सत है गुरमुख बूझै कोए वाह वाह कर प्रसाद आईए तेस जेवड़ अवर न कोए। आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए। अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए। हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए। बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए। हर कृपा ते सतगुर पाईए भेटे सहज सुपाए। मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए। त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार। मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार। बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार। पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदां का अभ्यास। हर नाम चित ना आवई न निज कर होवै वास। जमकाल सिरो ना उतर अंतर कपट विनाश। हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए। नदर करे गुर पेटिए हर नाम वसे मन आए। नानक नामे ही पत उपजे हर सुरहां समाए। मलार महला तीजा अष्टपदी

हां पतत तुम तारे, पतत पावन भगत बच्छल, कृपा सिंध स्वामिया, संत संगे भजन संगे, रौ सदा अंतर जामिया, कोट जन्म परमंत जोनी, ते नाम सिमरत तारे, नानक दर्श प्यास वर जियो, आप लिओ सुमारे, हर चरण कमल मन लीना, प्रभ जल जन तेरे मीना, जल मीन प्रभ जियो एक तू है, पिन आन ना जानिए, गए पूजा लेवो नाम देवो, तौ प्रसादी मानिए, पज साध संगे एक रंगे, किरपाल गोविंद दीना, अनाथ नीच सरनाए नानक, करमया अपना कीना, आपस को आप मिलाया, भ्रम पंजन हराया, आचर्य स्वामी अंतर जामी, मिले गुणित प्यारिया, महामंगल सुह उपजे, गोविंद गुणित सारिया, मिल संग सोहे देख मोहे, पुरब लिखिया पाया, बिनवंत नानक सरन तिन की जिन

पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया। ईस महेश्वर सेव तिनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरों फुरमाया। श्लोक महला दूजा, सावन आया हे सखी,

रचया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए, हुक्मी लिखे सिरलेख वेण कलम मसवाणिए। सत संगत मेलाप जिथे हर गुण सदा वखाणिए, नानक सच्चा शब्द सलाहे सच पछाणिए। सलोक महला तीजा, ऊनव ऊनव आया अवर करिंदा वन, क्या जाना तिस सहास्यों।

अंधेका नाव पारखू, एवे करे गुवाओ, इल्तका नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए कलका इहो नियाओ। महला पहला, हरणा बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाओ, फांदी लगी जात पहायन अगे नाही ताओ, सो पढ़िया सो पंडित बीना जिनी कमाना नाओ, पहलों दे जड़ अंदर जमे ता उपर होवे शाओ, हराज सी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नहिंदा पायन खाओ, रत पित कुत्ते हो चट जाओ।

उपजे पाइये मोह द्वार, पाए ते सहज पाइये मेरे ज्योति जोत अपार, पाए ते पाए जल लंगिए गुरमति विचार, पाए ते निरपो पाइये जिदा अंत न पारावार, मनमुख पै की सार ना जाननी तृष्णा जलते करे पुकार, नानक नावे ही ते सुख पाया गुरमति उरतार। श्लोक महला पहला, रूपे कामे दोस्ती भुखे साधे गंड, लबे माले कोल मिल मचल ऊंगे साउण पलंग, पौके कोप खुआर हुए

अकल मन गोर न मानी, मन कमीन कम तरीन, तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे अवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया, सग नानक दी बान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत अच्छा।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे।

जात रहे श्रम नासे सिमरत साधु संग पतत पुनीत होए खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथै सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नान पूर्ण होवे आस कानड़ा मोहल्ला पंजवां साध संगत निधर को नाम संग सहाई जी के काम रखाओ संतरेन नित मज्जन करे जन्म जन्म के किल बिख हरे संत जना की ऊंची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी कानड़ा मोहल्ला पंजवां साधु हर हरे गुण गाए मान तन तन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रखाओ ई पूत कहां लोभ आवे एक स्यों मन लाए महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद त्याय सगल त्याग शरण आयो नानक लेहु मिलाए कानड़ा मोहल्ला पंजवां पेख पेग बिसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रखाओ आन दा सुख सहज मूर्त तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जांत गुण रवंत दुख नस है रिद पय अंत सांत अमृतारस पीओ रसना नानक हर अंग रात कानड़ा मोहल्ला पंजवां साजना संत आओ मेरे रहाओ आन दा गुण गाए मंगल कसमला मिट जाए परेर संत चरण तरो माथ है चांदना गृह हुए अंधेर है संत प्रसाद कमल बिकस गोविंद भजो पेख नेर है प्रभ कृपा ते संत पाए वार वार नानक ओ बेर है कानड़ा मोहल्ला पंजवां चरण शरण गोपाल तेरी मोह मान तो परम राख लीजे काट बेरी रखाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रतनागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रा मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निध पतत उदारन कोड़ जन्म दुख कर पायो तुही नानक गुर नाम दिरड़ायो कानड़ा मोहल्ला पंजवां तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोड़ जापता सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़भागी रहाओ मुए अनाथ दाह जन तेरा अबर ओट सगली मुए त्यागी और परम काटे प्रसिमरत ज्ञान अंजन मिल सोबत जागी तू अथाह अद बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रापागी कानड़ा मोहल्ला पंजवां कुचल कठोर कपट कामी ज्यो जाने त्यों तार स्वामी रखाओ तू समरथ शरण योग तू राखे अपनी कल तार जाप ताप नेम सुसंजम नाही इन विदे छुटकार गर्त कोर अंध ते कड हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा मोहल्ला पंजवां कार चौथा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद।

नीच सा पेख समानो मुख बकनो मन मान रहाओ घट घट पूर रहे सुख सागर पय पंजन मेरे प्राण मने प्रगास पयो प्रम नास्यो मंत्र दियो गुरकान करत रहे।

अनक पांद की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं शोर आए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही शरण आए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, तानड़ा महला पंजवां, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है, हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ लाल अमोला।

अंध उजियारा सहज समाज समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो किरपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जब तीरे बिनसे मोह परम दुख पीरे अरहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कद पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर पेटत नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मने सुख पाईए साध जना मिल हर जस गाईए रखाओ कर कृपा प्रभु दे बसेरो चरण संतन के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जस सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रापरसन रसना हर हर पूजन तृप्तानी अखियां कौ संतोख प्रदर्शन रखाओ करनन पूरयो जस प्रीतम कारमल दोख सगल मल हरसन पामन तामन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गई पूर्ण अबनासी आन उपाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जन अपने अंध कोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा ओ कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरिया अरहाओ अंग मत अनरत कोमित हित प्रीतम पेखत प्रमत लाह गरिया अनित व्यवहार अचार विधहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोविंद त्याग आन लाग गए अमृत उडार पूम पाग गए बिखे रस्यों आसक्त मूड़े ताहे सुख मान काम क्रोध लोभ व्यापेओ जन्म ही की खान पातत पावन शरण आयो उदर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अब लोग कहो राम।

अवर ओट में कोई न सूझे, एक हर की ओट में आस, क्या दीन करे अरदास, जो सब कड़ प्रभु निवास, प्रभ चरणन की मन प्यास, जन नानक दास कहित है तुमरा, हौ बल बल सद बल जास, कानड़ा मोहल्ला पंजवा कर छेवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, जगत उदाहरण नाम प्रे तेरे, नाम नित नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे,

संतना हर संतना हर संतना की रेन कियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान वो त्याग छोड़ो।

विकार सागर पद तमो मान अंध बिकल माया संग तंद कर गए प्रभ आप काढ़ हो राख लियो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन।

औरंगी सब एकत बचन चलावै गो गुरमुख एको एक पछाता गुरमुख होए लखावै गो गुरमुख जाए मिले निज महली अनहद शब्द बजावै गो जी जंत सब सहट्यो पाई गुरमुख शोभा पावै गो बिन गुर भेटे को मैल न पावै आए जाए दुख पावै गो अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मिलावै गो सतगुर मिलत महा सुख पाया।

तू है सदगुर, मैं सदगुर शरण मिलावै गो। कानड़ा मोहल्ला चौथा, मन गुरमत चाल चलावै गो। जो मैगल मस्त दीजे तर कुंडे, गुर अंकस।

था। हमरी जेबा एक प्राभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे ए आणिया हर तुम वड अगम अगाह। हर दियो प्रभु मत उत्मा गुर सदगुर कै पग पाह, सत संगत हर

जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वडभाग वडोना सब त्यावो आद सते जुगाद सते प्रतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना सरोक मोहला चौथा हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरमंत हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलया आए अचिंत हर आपे कड़ कड़ वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिखया पाएदा साब सेट पाई जी जंत।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मनतन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मन्या जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप न रेखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पय नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर घर चौंदया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखया तिन को मिलया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखया गुरभजन ते आया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकया साव कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लार भगत वसिखया सलोक महला चौथा राम नाम राम रब रहे राम रामो राम रमीत घड़ घड़ आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निट बसे जग जी।

रूतम गर प्रव नाम है, गुरभजन सुभागे लीता, दुख दाल दिल सबो लह गया, जा नाओ गुरु घर दीता, सब सेवो मोहनो, मन मोहनो, जग मोहनो, जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा, मन अंतर होम में रोग है, ब्रह्म फूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग वंजाए, मिल सदगुर साधु सज्जना। महला चौथा, मन तन ताम सगारवा, जा देखा हर नैने, नानक सो प्रामय मिले, हो जीवा साध सुने पौड़ी, जगन्नाथ जगदीशर करते, अपरंपर पुरख अतोल, हर नाम ते आवो मेरे गुरसिखो, हारूतम हर नाम अमोल, जिन त्याया हिरदे दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल, वडभागी संगत मिले, गुर सतगुर पूरा बोल, सब त्यावो नर नारायणो, नारायणो, जित चूका जाम झगड़ चघोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार, नानक हर जन हर लिव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन, जे कर दूजा देख दे, जन नानक कढ चन पौड़ी, जल थल मही अल पूरनो, अपरम परसोई।

गोपाल गुण प्रगट सब लोई। सलोक महला चौथा। गुरमुख मिले से सजना हर प्रपाया रंग, जन नानक नाम सलाहे तू, लुड़ लुड़ दर गए वंज।

रामा राम रामे अंत न पाया, हम बारक प्रद पारे तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया। अरहाव हर के नाम असंग अगम है, अगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत भो कीनी, एक तिल नी कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गाव है, गुण गोविंद अंत न पाया, तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बहु जपगे था न पाया। उस्तद करे तुमरी जनमाधो, गुण गावे हर राया, तुम जल निध हां मीने तुमरे, तेरा अंत न कतहु पाया। जन कहो कृपा करो मसूदन, हर देवो नाम जपाया, मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसया, हर घर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाओ। गुर के पाग सिमरो दिन राती, मन हर घर हर बसया, हर घर हर कीर्त जग सारी, घस चंदन जस कसया। हर जन हर घर हर लिवलाई, सब सागत खोज पया, ज्यो किरत संयोग चल्यो नर निंदक, पग नागन छोहे जलया। जन के तुम घर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखया, कहां पया दायत करी बखीली, सब कर कर चर परया। जेते जी जन प्रभ किए, सब काले मोह ग्रसया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे,

बहुत बहुत शोभा हम तुष कर कर बरन थे हमरी मत वस गद प्र तुमर जन नान के प्रसमरत थे कल्याण मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर गुण अकथ सुन सही धर्म अर्थ सब काम ओख है जन पीछे लग फिर सही रखाओ सो हर हर नाम ते आवे हर जन जिस बड़भाग मथई जय दरगे प्रवलेखा मांग ते छुटे नाम त्याए थई हमरे दुख बो जन्म जन्म के दुख होमे महल लग।

अंति अवसर आए बंत है, है राखे नाम साथई, जन तेरा जस गावे हर हर प्रभ, हर जप्यो जगन थई, जन नान के प्रव राखे स्वामी, हम पाथर रख बुड़ थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रव जाने, और कोई निंद करे हर जन की, प्रवता का कहया एक तिल नी माने, रखाओ और सब त्याग सेवा कर अचुत, जो सबसे ऊज ठाकुर भगवान ने, हर सेवा ते कालज होए ना सके, चरणी आए पवे हर जाने, जा को राख ले मेरा स्वामी, ता को सुमत दे पैकाने, ता को कोई अपर ना सके, जा की भगत मेरा प्रमाने, हर के चोज विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमक पछाने, ता ते जन कौ अंध पया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछताने, तुम हर दाते समर्थ स्वामी, एक मांगो तुम पासो हरदाने, जन नानक कहो हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मुई हर चिराने।

प्राप मुहे कब गल लावें गे रखाओ, हम बारक मुगद एयान पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल बेगार जगत पिद पावेंगे, जो घर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे, मुहे दूजी ना ही ठाओर जिस पे हम जावेंगे, जो घर पावे भगत तिना घर पावेंगे, ज्योति ज्योत मिलाए ज्योत रल जावेंगे, हर आपे हुए किरपाल आप लिवलावेंगे, जन

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरंग की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन को

रामा राम राम पूज करी जे मन तन अर्प तरो सब आगे रस गुरमत ज्ञान दरड़ी जय रखाओ ब्रह्म नाम गुण साग तरोव नित चुन चुन पूज करी जे आत्म दियो दियो है आत्म रस लागे पूज करी जे विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल बिचर बिचर रस पीजे गुर प्रसाद पदार्थ पाया सदगुर को यो मन दीजे निर्मोल अद हीरो नीको हीरे हीर बेधीजे मन मोती साल है गुर सबदी जित हीरा परख लईजे संगत संत संग लग ऊचे जो पीप पलास खाए लीजे सब नरमे प्राणी उत्तम होवे राम नामे बास बसीजे निर्मल निर्मल कर्म भो कीने नित साखा हरी जड़ीजे तरम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया बेकार बाजग दीजे एक जोत एको मन वसया सब ब्रह्म दृष्ट एक कीजे आत्म राम सब एक है पसरे सब चरण तले सिर दीजे ना बिना नगटे नर देखो तेन कस कस नाक वढ़ीजे सागत नर अंकारी कहिए बिन नावे त्रिग जीवीजे जब लग सास सास मन अंतर तद बेगल सरन परीजे नानक कृपा कृपा करता रहो मैं साधु चरण पखीजे कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण तुवीजे केल बेख दैन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा कीजे रखाओ मंगत जन दीन खरे दर ठाडे आतरसन को दान दीजे त्रागे त्राए सरन प्रव्याय मुको गुरमत नाम जरडीजे काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उड़ जूझ करीजे अंगीकार करो रख ले वो गुरपूरा काड कढ़ीजे अंतर अगन सबल अद बिघया हे शीतल शब्द गुर दीजे तन मन सांत होए अदकाई रोग काटे सूख सवीजे जो सूरज करण रव्या सरबठाई सब घट घट राम रवीजे साधु साध मिले रस पावे तत निरकर बैठ्या पीजे जन कौ प्रीत लगी गुरसेती क्यों चकवी देख सुरीजे निरखत निरखत रैन सब निरखी मोह काढ़े अमृत पीजे सागत स्वान कई

मत सद पाए भगत गोविंदा, कीर्त कर्म कार निसंदा, अंतर रवतव राज रवंदा, प्रयो प्रयो प्रीत प्रेम पुरतारी, दीना नाद पियो बनवारी, अन दिन नाम दान व्रतकारी, तृप्त तरंग तत विचारी।

आए बहुरंगी सिद्ध उपाय प्रखेल किया कर कर वेख करे कराए सर्व जिया नो रिजक दिया कली काल में रव्या राम घाट घाट पूरया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रखाओ गुप्ता नाम वरते विच कल युग कट कट हर भरपूर रहया नाम रतन तिना हिरदे प्रगटया जो गुरसरणाई पज पया इंद्री पंच पंचे वसयाने खिमा संतोख गुरमत पावे तो तन तन हर जनवड़।

लेव उर्मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम मिटो कुर्बान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ, आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान, केत विद क्यों पाइये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत में हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान, वड़े भाग सत संगत पाई, गुर सदगुर परस भगवान, गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान, प्रभाती मोहल्ला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोले, सवरैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई।

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे।

आर ब्रह्म आराधी अपने सदगुर कै बल जाई, आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाट होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए, आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवां, सिमरत नाम किलब सब नासे, सत्य नाम गुर दी नीरासे, प्रभु की दरगह शोभा बनते, सेव सेव सदा सोहंते, हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसै।

बसे गुरचरना, निरपय साध परेहर सरना, आनंद सहज रस सुख कनेरे, दुश्मन दुख न आवे नेरे, गुर पूरे अपने कर राखे, हर नाम जपत केलबग सब लाथे, संत साजन सिख पय सुहेले, गुर

दुख पाग तरन पालन जोग सदगुर भेट जमना तेट जिस तुर होवे संजोग रैन दिनस त्याय हर हर तजो मन के परम साध संगत हर मिले जिस है पूर्ण कर्म जन्म जन्म विखाद बिनसे राख ली ने आप मात पिता मीत पाई जन नानक हर हर जाप प्रभाती महला पंजवा विपास पड़ताल।

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर काढ़े मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाई है मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने

के पांडे नाग पोज कुंभारे समय सच्चा एको सोई इसका किया सब कश होई हम पछाने सो एको जाने बंदा कहिए सोई अलो अलख न जाई लखिया गोर गुड़दी ना मीठा कहे कबीर मेरी शंका नासी सर्व निरंजन डीठा प्रभाती वेद कतेब कहो मत झूठे झूठा जो ना विचारे जो सम एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे मुल्ला कहो न्याओ खुदाई तेरे मन का परमन जाई रहाओ पगर जीव आनिया दे बिनासी माटी को बिस्मिल किया ज्योत स्वरूप अनहात लागी कहो हलाल क्या किया क्या उजू पा किया मोह होया क्या मसीत सिर लाया जो दिल में कपट निवाज गुजारो क्या हज का बेजाया तू ना पाक पाक नहीं सूझिया इसका मर्म न जानिया कहे कबीर पिस्त ते चूका दोज किस्यो मन मानिया प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवा कर अध पद आसमाई सिद्ध समाज अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई लेहो आरती हो पुरख निरंजन सब गुर पूजो पाई ठंडा ब्रह्म निगम विचारे अलख न लखिया जाई रखाओ तत तेल नाम की आबाती दीपक दे उजियारा जो तलाए जगदीश जगाया बूझे बूझनहारा पंचे शब्द अनहद बाजे संगे सारंग

पूर्ण पुरख भगवान है, भगत वत्सल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है,

सत्संग खल पंडित कंठ रमणी आराम राम माला हस ऊच प्रेम धारणी जीपन जो उत्तम श्लोक उदरणंग नयन नंदनी गुरमंत्र हीन अस जो प्राणी।

तरंग रूपं नाच दुर्लभं दुर्गराजन नाच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नाच दुर्लभं स्वाश अंबर है नाच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नाच दुर्लभं बनता विलास है नाच दुर्लभं विद्या प्रवीण नाच दुर्लभं चतुर चंचल दुर्लभं एक भगवान नाम है नानक लब्धयं साध संग कृपा प्रभं जात कत है तत दृष्टं स्वर्ग।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्पमाया।

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निरास आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्व सुखण है।

करुणा न उपर्जते, विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट है, अनक शासन ताड़ंत जम दूत है, तल संगे अधवं नर है, दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक, सर्ब जी रखया क्रोत, हे लोभा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते तावंत जी या भो प्रकारं, अनक पांद बो डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जया, अकरणं क्रोत अखात खाद्यं असाज्यं सा समझया, त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण है, आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण, परम भयान उद्यान रमणं महा विकट असाध रोगण है, पैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे, हे प्राण नाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरण है करुणामय सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीण समय तिमरंत नानक राम दामोदर माधव है, चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है, साध संगेण तरणं नानक महासागर पय दुत्र है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है,

तहंत जनमं नेत नेत कथंत वेद ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़पागी है उदयान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खर है विखम स्थान मन मोह मदरंग मां असाध पंच तस्कर है हीत मोह पय परम ब्राह्मणं अंग फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध घोरंग अगम तीर नय लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मदर मानुखियंग हृदयंग भूम वायरण है निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सुवजन है अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नेत्यास विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मद्र प्रिया तोयं सत हदंग परम बादंग अवर्तित है शुद्ध अशरण गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोर मतंग बलवंत बलाद कारण है चरण कमल नय पजंत तरण समान तिग जन्मन है

कोप सुगंध परसमानोख देह मलीन मज्जा रुद्र दुर्गंध नानक अथ गर्बेण अज्ञानन परमाणु परजंत आकाश है दीप लो से खंडन कशेण नैन पारेण नानक बिना साधु न सिद्ध अते जानो सत होवंतो मरणो त्रिटेन मिथया कीत साथ चलंथो पणंत नानक साध संगेन माया चित परमेण इष्ट मत्रेख बांधवै लब्धं सा संगेन नानक सो अस्थानं गोपाल भजनं मैलागर सिंगेन निम बिरख से चंदन निकट बसंतो बांसो नानक अंबुद ना भोते गाथा गुंप गोपाल कथं मथं मान मर्दन हतंग पंच स्तरेण नानक हर बाणे परहारण बचन साध सुख पंथा लहंता बड़ कर्मण रहंता जन्म मरणेन रमण नानक हर कीर्तन पत पुरजहेन चढ़ियं न जड़ियं पेड़ संपता ना बिहून बिखमता नानक बहंत जोन पास रोवरैणी पावनी सा संगेन लभंतं बड़ पागण हर नाम गुण रमण नानक संसार सागर न व्यापण गाथा गूढ़ अपारं समझण बिरला जन संसार काम तजण नानक गोविंद रमण साध संगम सुमंत्र साध बचना कोड़ दोख बिनासन हर चरण कमल ध्यान नानक कुल समूह उदाहरण सुंदर मंदर सैन है जीन मध्य हर कीर्तन है मुक्ते रमण गोविंद है नानक लब्ध्यं बड़ फागण हर लब्धो मित्र सुमितो पिदारण कदे ना चित्तो जा का अस्तिल तोल अमितो तोई नानक सगा जी संग कितो अबजसंग मिटंत सद पुत्र है सिमरताब हृदय गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण है मरणं विसरणं गोविंद है जीवनं हर नाम तिहावण है लवणं सा संगेन नानक हर पूर्व लिखण दसन बिहून भुयंगं मंत्रं गारड़ी निवारं प्याद उपाड़न संतं नानक लब्ध कर्मण जद कथ रमणं तरणं सर्वत्र जीअण तस लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुरदर्शन चरणार बिंद मन विद्यं सिद्यं सर्व कुशलन गाथा गावंत नानक भव्यं परापूर्वण शोभ बचन रमणं गावणं सा संगेन उदरणं संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते वेद पुराण शस्त्र विचारं एकंकार नाम उर्धारं उलय समूह सगल उदारं बड़भागी नानक कोतारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहण लब्ध्यं सा संगेन नानक बड़भागी पेटंत दर्शन सर्व दोख परं त्यागी सर्व धर्म तिरणंतण है लब्धेन सा संगेन नानक मस्तक लिखेण होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारण सुखेन बैन रत्न अरचनं सुंबरंगण रोग सोग प्रयोगं नानक सुख ना सुपन है पुनः मोहल्ला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद आद कलम अगर

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचल खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर का सोईज तन बताए सखी प्रयोग पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहाल लिया करण न सुनगी नाद करण मुंद कालिया।

दे बपड़ा जे मन नाही ज्ञान। राम कबीरा रब रहे अवर तजे सब काम, कबीर परदेसी कै घागर।

हार जस लिखन ना जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे, हृदय बसे गोपाल। कबीर रमैया कंठ मेल, चूक है सर्प जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं, मंदर दे जराए। पंचो लड़के मार के रहे राम ल्यो लाए। कबीर ऐसा को नहीं, त्यो तन दे वै फूक। अंधा लोग ना जानई, रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चेचड़ी, सुन हो बीर मसान। लोग सुबाया चल गयो, हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दे दिस जाए। जो जैसी संगत मिले, सो तय सो फल खाए। कबीर जा को खोजते, पायो सोई ठौर। सोई फिर के तू पया, जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की,

एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया, कहूं न पाया ठौर। जिन हर का नाम न चेतेओ, कहां भुलाने और। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाहो। साकत संग ना कीजिए, जाते हुए बिना हो। कबीर जग में चेत्यो जान कै, जग में

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निसंक। जो जन निर्दावे रहे तो गने इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर। भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे

फरीदा कोठे मंडप माड़िया एतना लाए चित मिट्टी पई अतोलवी कोई ना होसी मित फरीदा मंडप माल न लाए मर्ग सतानी चित तार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी वही साई।

मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश, गुण ही परिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश। तत्ती तोय न पल्लवे जेजल टुब्बी दे, फरीदा जो डुहागन रब दी चूरेंदी चूरे। जा कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले, फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थीए। कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज, चिंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज। हंस उड़ कोदरे पया।

आस कौन सो अखर कमण गुण कौन सो मणिया मंत कौन सो वे सो हो करी जित वस आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जे बा मणिया मंत ए त्रै पैणे वेस कर ता वस आवी कंत मत हुंदी होए ए आणा ताण हुंदे होए निताणा अण हुंदे आ वंडाए ओ ऐसा भगत सदाए ए फिक्का ना गालाए सब नाम है सच्चा धणी याओ ना कही ठाहे मानक सब अमोल वे सब ना मन मानक।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सरब रहो भरपूर सगल घट रहो बेआपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक आन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पर परे ही ते परे अपर अपार पर अपनो भावन कर मंत्र ना दूसरो धर ओबद परलो एक नेमक तो कर आन नाही संसार उजियारो निर्मार कोट प्राशित जागे नाम लीगे हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन धारे एक ते की ए बिस्तारे पूर है ओ सर्वमय आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे आप ही धारण धारे कुदरत है देखारे वर्ण चेन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीजे प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कम उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को थानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होए कृपाल सोजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसयो छे जन्म मरण।

जंपो गुण बेमल सुजन जन केरे आमे नाम जा को फुरिया। इन सदगुर से शब्द रस पाया नाम निरंजन उर थरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक त्याग तत् संत सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे छुड़त प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद परया ते पीवे संत करे मन मज्जन उब जिनो सेवा करिया तिन पाओ निवार अन पय पद दीना शब्द मात्र ते उदर तरे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे सदगुर मत गूढ़ बिमल सत्संगत आत्म रंग चिलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपय निरंजन करे लहा सदगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद फल पंच करे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे आन पो उन्मान अगले वे लागी पारस फेटिया सहज करे सदगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिट्या जिन मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार निध अंतर तारयो दो पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सदगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उच्चर तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बस अमे रस रसन प्रकाश मिलत सा उपजय

सतगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो। गुर रामदास कल उचरै तै अपाए अमर पद पायो। जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नाम रिद नाम निधान रिद सिता की दासी। तै सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे।

तेरे उर कर शब्द सुपुन अगन कटे सब तेरे उर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत काव नाल कहे जिन गुरु ना देखे ओ नौ कियो ते अक्यत संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन सुमरथ कल युग सुनत समाद शब्द जिस केरे उन दुखन नास सुखदायक सूरव जो तरत ध्यान बसत ते नेरे पूरव पुरख दे घर सिमरत मुख देखत अग जाए परेरे जौहर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो होती जो प्यास पियूस पिवन की वंचित सिद्ध को बिद मलायो पूर्ण पोमन ठौर बसो रस बासन स्यों जो दहंग दिस थायो गोविंद वाल गोविंद पुरी साम जलन तीर बपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को तो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हथ तरयो गुर कीनी कृपा घर नाम दियो जे देख चिरन अगन हरयो निज बासर एक समान ध्यान तो नाम सुने सुद पान डरयो पण दास सुवास जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो आराम दास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ धरयो आप रखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाग सुपारे कर आज पुन द्रौपदी राज रखी हर प्रभु जी छीनत वस्त्र दीन बोसाज सो दामा अबदा ते रखिया कनका पड़त पूरे ते काज श्री सब गुर सो प्रसन्न कल जुग होए रखो दास पाठ की लाज चोलना गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप प्राणियों शब्द हर हर जप नाम नमृद अप रसन अयन सरस सत कर जानियो हुन प्रेम रंग पाई है गुरमुख त्याई है आन मार्ग तजो बजो हर ज्ञानियो बजन गुरिद तरहो पंच पू बस करो जन्म कुर उदरहो द्वार हर मानियो

तदकार मन गए अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रसदा सलामत, कहे न सके को तू कद का, ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणत, तिनको मोह भया मन मत का, 84 लख जोन उपाई, रिजक दिया सबहु कौ तद का, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर परगासा, आपे जाल आपे थल थमन, आपे किया कड़कड़ बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सबे विचार हो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तो जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना, माने ब्रह्माद क्रुद राधक, काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाईगे परमार्थ, तत्संगत स्थिति मन खजना, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना, अगम अनंत अनाद, आज कोई न जाने, शिव ब्रंत तर ध्यान, नित्य से वेद बखाने, निरंकार निर्वैर, अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समत, तरन तारन प्रसोई, नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथरा रसना रसे, श्री सत नाम करता पुरख, गुरु रामदास चित्ते बसे, गुरु समर्थ गए करिया त्रोव, बुद्ध सुमत सुमारन कहो, हुन त्रम तुजा फैरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण कहो, मथुरा जन जान कई जी साच, तो और कछु ना विचारन कहो, हर नाम भूत बड़ो कल मैं, हर सागर पार उतारन कहो, संत ही सत संगत संग।

पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नहों के गुर रामदास जिन पायो छतर सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन कौ दे आयो। एक ओंकार

ना पदार्थ पाया अटुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रकाश काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मानव चंचल मत है अंतर

हर मंदिर वस्त अनेक है, नाम निद नाम समाल, तन भगवंती नानका जिन्ना गुरमुख लद्दा हर पाल, वड भागी गढ़ मंदिर खोजया हर।

कर गूड़ी शैबर लाए बाबी गे तन मन सुख होए जां तत बूंद मोहे पाए अन तन बहुता उपजे धरती शोभा पाए अन दिन लोग भगत करे गुर कै शब्द समाए।

जे आन दिन रहे लिवलाए, जिन्ना पिरी प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ति है, नानक मिले सो पाए, गुरमुख एओ मन रहसी है, जिन्ना पिरी प्यार क्यों जीवन पिर बहारे, जा सो देखन अपना नानक थीवन पी हरे, जिन्ना गुरमुख।

संदूर सुहाई सारस अहीरी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बाण औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सुवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कई अलाप का मोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप का लंका कुंतल औ रामा कामल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कनरा कल्याना अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गाव है पांचो संग बरंगन लाभ है बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसावरी।

मन कोई पंच प्रमाण पंच प्रधान पंचे पावे दर गै मान पंचे सोह है दर राजान पंचा का गुरेक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जन सूत जे को बुझे हुए सचियार तबले उपर केता पार धरती होर परे होर होर तिस्ते पार तले।

सो आदा नीला नादा नाथ जुजुए को वेश आसन लोय लोय पंडार जोग छपाया सोए का वार कर कर वेख सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तसै आदेश आदा नीला नादा नाथ जुजुए को वेश एक दू जी बहु लख हो है लख हो वै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़िया चढ़िया होया अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगति छुट्टै संसार जे साथ जोर कर वेखै सोए नानक तुम नीच ना कोए राती रुती रुती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जूत के रंग तिनके नामा अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सचा आप सचा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आख हो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते ब्रह्मे घड़त घड़ी है रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतियां खानी केतियां बाणी केते पात नरिंद केतियां सुरती शिव केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोडानंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घड़त घड़ी है बहुतानूप ਤਾਂ ਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਿਛਤਾਏ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਏ ਸੁਰਾਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो युग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यो तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना।

आखण वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे भंडारा, जिस तू देह तसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाऊ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूख खाए चलिया दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचै नाए रहाओ, साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड़ा ना होवै काट ना जाए, ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग, गुण एहो होर नाही कोए, ना को होवा ना को होए, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिंदन करके कीती रात, खसम विसारै ते कम जात, नानक नामे बाय सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन के बड़ भाग वडेरे, जन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्तासाय, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित्त वै उदम।

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तू दयापे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तू दयापे सृष्ट सब उपाई जी, तू दयापे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर नाम कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तनह किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तै डूबी अले, मन एक ना चेत समूढ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। पही प्रापत मान खुदे हुरिया, गोबिंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्त आखिए करते का होए बिचारो, तित कर गावहो सोहेला सिवरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरभौ का सोहेला, हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालिया न देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिसदा ते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावहो तेल, देहो सजन आसीसड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल। कर करे हो पहुंचा सदले नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन। राग आसा

वासा अराग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मेर साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुनवड्डा है कर डंडौत पुनवड्डा है रहाओ साक तहारा साधना जानिया तने अंतरा हम मैं कंडा है ज्यो ज्यो चल है चुबै दुख पावै जम काल सह है सर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है जन नारक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाड़ चलो हरलाहा आगे बसन सोहेला औद घटे दिन सुरहनारे मन गुरमल का सवारे रहाओ एहो संसार बिकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगा

तेरा चेतना आवै नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरै तेरा चेतना आवै नाओ सुल्तान होवा मेल लस्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला विसरै तेरा चेतना आवै नाओ श्री राग महला पहला कोट कोटि मेरी आरजा पवन पीण पियाओ चंद सूरज दोए गुफै ना देखा।

श्री राग महल्ला पहला। कुंगू की काया रत्ना की ललता अग्रवास तन सास। आठ सठ तीर्थ का मुख टिक्का तित घट मत विगास। ओत मती सालाहना सच नाम गुणतास।

ताल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सतसर नावन जाओ। पूरो पूरो आखिया पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण है, पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों काटे गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो पैने गल मिल है अंक सह लिड़िया, मिलके करे कहानियां समर्थ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर। रहाओ जाए पुछो सुहागणी तुसी राव्या किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी, पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। केतियां तेरियां कुदरती केवड तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै सच मैं सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुर बचनी पौ खाए। नानक सच्चा पातशाह आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी होमै मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थी है गुरमुख शब्द समाए रहा।

बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे है, मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार, तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार, लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यो प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप, तन मन गुर पै वेचिया मन दी सिर नाल। त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल, सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला, मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतपाल ही लेखे सास गिरास।

अंतर की गत जानिए गुरमिलिया संको तार, मोया जित कर जाइए तित जीवन दया मरमार। अनहद शब्द सुहावने पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तै हो मैं होए बिनास। सतगुर सेवे अपना हो सतगुर बाणे तास, खड़ दर गए पै

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझै समाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कश करी सो

सतगुर सच प्रभ निर्मला शब्द मिलावा होए रहाओ। शब्द मिलै सो मिल रहै जिसनो आपे लय मिलाए, दूजे पाए को ना मिलै फिर आवै जाए। सब मैं एक वर्तदा एक हो रहा समाए, जिसनो आप दयाल होए सो गुरमुख नाम समाए। पढ़ पढ़ पंडित ज्योत की वाद करै विचार, मत बुद्ध पवी न बुझई अंतर लोभ विकार। लख चौरासी भरम दे भ्रम भ्रम होए खुआर, पूर्व लिखिया कमावना कोई न मेटनहार। सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजै आप गवाए, शब्द मिलै ता हर मिलै सेवा पवै सब थाए। पारस परसै पारस होए ज्योति ज्योत समाए, जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन भुखा भुखा मत करै मत तू करै पुकार, लख चौरासी जन श्री

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो, जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगारे सुख वसै, ज्योतिष पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाहीं, भाव लाए जन कोए, नानक एक जो दोई मूर्ति, शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाने, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझै नाही, अनदन दुख विहानी, मनमुखे अंद न चेतही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै, तां हर विसर ना जाई, रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विचह मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जमन मरना, मनमुख पत गवाई, सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुर की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा सो फल पाए, जप जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए, सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुर की शरणागति, हों तन कै बल जाओ, दर सच्चै सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ, नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार, सेजै कंतना आवई, नितनित होए खुवार, पिर का महल ना पावई, ना दिसै घर बार, भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, रहाओ, गुरमुख सदा सुहागणी।

अंतरा दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणे जो चलै दुख ना पावे कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा, जा पिर जाना अपना तन मन अगे धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे, भाई रे गुरबिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाए।

में अगली। मनुआ रजा सहि सुभाए, गुर का शब्द अमृत है, जित पीता तिख जाए, एहो मन साचा सच रता, सचे रया सुमाए।

जो सच रहे लिव लाए, नदरी नाम ते आई है विण कर्मा पाया ना जाए। पूरे पाग सत संगत लहे, सतगुर पेटे जिस आए, आन दिन नामे रतिया दुख बिखिया विचों जाए। नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए। श्री राग महला तीजा। आपना भाव दिन पाए उन जिन गुर का शब्द विचार, सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार। दुबदा मैल चुकाई अन हर राख्या अवतार, सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार। मन मेरे हाँ मैं मैल भर नाल, हर निर्मल सदा सोहना शब्द सवारन हार। रहाओ सच्चा शब्द मन मोहया, प्रभ आपे लय मिलाए। अंधन नामे रतिया ज्योति जो समाए, ज्योति हूं प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर भेटिया तिने आए, मेरे नाम है शब्द मणि दूजे पाए खुआए। तिस बिन घड़ी ना जीवन दी दुखी रहन विहाए, भरम भुलाना अंधला फिर आवे जाए। नजर करे प्रभ अपनी आपे लय मिलाए, सबके सुनदा वेखदा क्यों मुकर पया जाए। पापो पाप कमाम दे पापे पजै पचाए, सो प्रभ नजर ना आवई मनमुख बूझ ना पाए। जिस वे खाले सोई वेख नानक गुरमुख पाए। श्री राग महला तीजा। बिन गुर रोग न टुटई हो मैं पीण न जाए, गुर प्रसादी मन वसै नामे रहे समाए। गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्द भरम भुलाए, मन रे निज कर वासा होए। राम नाम सलाहे तू फिर आवन जान ना होए। रहाओ हर एक को दाता वर्तदा दूजा अवर ना कोए, शब्द सलाही मन वसै सहजे ही सुख होए। सब नदरी अंदर वेखदा जय पावे तैं दे, हम मैं सबा गणत है गणत नो सुख नाहे। बेकी कार कमावनी बेख ही माए समाहे, बिन नामे ठौर ना पाए नी जमपुर दुख सुहाहे। जियो पिंड सब तिसदा तिसै दा आधार, गुर प्रसादी बुझी है ता पाए मोख द्वार। नानक नाम सलाहे तू अंत ना पारा वार। श्री राग महला तीजा। तिन्ना आनंद सदा सुख है जिन्ना सच नाम आधार, गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार। सदा सदा साचे गुण गावै साचा नाए प्यार, कृपा करके अपनी दितोन भगत भंडार। मन रे सदा आनंद गुण गाए, सच्ची बाणी हर पाई है हर सो रह समाए। रहाओ सच्ची भक्ति मन लाल थी आरता सह सुवाए, गुर शब्दी मन मोहया कहना किछु न जाए। जेह वारती सब सच्चा अमृत पी वै रस गुण गाए, गुरमुखे हो रंग पाई है जिसनों कृपा करे रजाए। संसाए हो संसा

कर उपाव थके सब कोए, सहस स्याणप कर रहे मन को रह रंग न होए, कूट कपट न पायो जो बीजै खावै सोए। सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली पो नहीं, दर गुरमुखानो साबास। बिख पाओ जल डुबदे कड लै, जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा, नाम मिलै मन तृप्ती है, बिन नामै त्रिक जीवास। कोई गुरमुख सज्जन जे मिलै, मैं दसे प्रभ गुणतास। हाँ तिस विटों चौक

कुदम करे पशुपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चा पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। कड़ी मोहत का पाहुना का स्वरण हार माया काम व्यापिया समझै नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दात पहुतिया लावे कर तैयार जां होवा हो।

एको विसरना जाओ। तंदा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ। आसा सबे लाहे कै इका आस कमाओ। जिनी सतगुर सेवया तिने अगे मिलिया थाओ। मन मेरे करते नू सलाहे सबे छड सियाणपा गुर की पैरी पाहे रहाओ। दुख भुख न व्यापई जे सुखदाता मन होए। किथी कम न छिजीऐ जा हिरदै सच्चा सोए। जिस तू रखै हथ दे तिस मार ना सकै कोए। सुखदाता गुर सेवीऐ सब अवगण कड्डै धोए। सेवा मंगै सेवको लाइया अपनी सेव। साधु संग मसकते तूठै पावा देव। सब किश वसगत साहेब आपे करन करेव। सतगुर कै बलिहार नै मनसा सब पूरेव। इको दिसै सज्जनो इको पाई मीत। इक सह दी सामग्री इक सह दी है रीत। इक सस्यो मन मानिया ता होवा निचरचीत। सच खाना सच पहनना टेक नानक सच कीत। श्री राग महला पंजवां। सबे थोक प्राप्ते जे आवै एक हाथ। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवै मथ। मेरे मन एक सस्यो चित लाए। एक बिन सब धंद है समिथ्या मोह माए रहाओ। लख खुशियां पात साहियां जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। जिस कौ पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गए। सफल मूर्त सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार। दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। बहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार। थान सुहावा पवित है जिथे संत सभा। ढोई तिस ही नू मिले जिन पूरा गुरु लब्बा। नानक बद्दा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। श्री राग महला पंजवां। सोई त्याई है जियड़े सिर शाहां पातशाहो। तिस ही की कर आसमान जिसका सब सविसा हो। सब सियाण पां छड कै गुर की चरनी पाहो। मन मेरे सुख सह सेती जपनाओ। आठ पहर प्रभ त्याए तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ। तिस की सरनी पर मना जिस जीवड़ अवरना कोए। जिस सिमरत सुख होए घना दुख दर्द ना मूले होए। सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहेब सच्चा सोए। साथ संगत होए निर्मला कटिए जम की फास। सुखदाता पै भंजनो तिस आगे कर अरदास। मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवै रास। बहुतो बहुत वखाणी है ऊंचो ऊंचा थाओ। वरना चेहना बहरा कीमत कह ना सकाओ। नानक कहो प्रभ मया कर सच देवो अपना नाओ। श्री राग महला पंजवां। नाम ते आए सो सुखी तिस मुख उजल होए। पूरे गुर ते पाई है प्रगट सबनी लोए। साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए। मेरे मन हर हर नाम ते आए नाम सहाय सदा संग। आगे ले छाए रहाओ दुनिया किया वड्याईया कम न आवै काम। माया का रंग सब फिका जातो बिनस निदान। जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रधान। साधु की हो रेण का अपना आप त्याग। उपाव सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग। तिसै प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवै भाग। तिसै प्राप्त भाई हो जिस देवै प्रभ आप। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसे हो मैं ताप। नानक कहो गुर भेटिया बिनसे सगल संताप। श्री राग महला पंजवां। एक पछाणु जी का एको रखनहार। एक सका मन आसरा एको प्राण आधार। ते